0: सप्ताह की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti 24/7 live pe.
1: आइए आइए बताएं बताएं थोड़ी सी बातें आपको बताएं। रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग 8 बजे के उस बार बिल्कुल पहुंच चुके हैं, 8:05 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक पे। मैं अंतरा आपके साथ चल रहे हैं पे मस्ती का मंत्रा। यस, मस्ती का मंत्रा मतलब ट्यूसडे मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। हम हफ्ते के दूसरे दिन में आ चुके हैं, अगस्त के आखिरी पड़ाव पे चल रहे हैं एंड इट इज प्रीटी एक्साइटिंग भाई। एक्साइटमेंट तो गोविंदा की लाइफ में चल रहा है बॉस। हर शो पे मेरे पास कुछ ना कुछ होता है उनके लिए बात करने को। इनफैक्ट कल ही मैं बात कर रही थी एंड आज वापस से एक अपडेट लेकर यहाँ पर पहुंच चुकी हूँ। भाई कुछ हो ना हो, फिल्में आ रही हो नहीं आ रही हो ये तो पता नहीं, लेकिन गोविंदा और सुनीता आहूजा ये दोनों अभी फिलहाल न्यूज पे डेफिनेटली काफी बड़े हुए हैं। सो वह हमारे चीची जो है गोविंदा, ही हैज अपेरेंटली इन्होंने एक इशू किया है लीगल नोटिस अगेंस्ट फॉल्स डिफेमेटरी एंड अनवेरिफाइड कॉन्टेंट अबाउट उनकी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। पर्टिकुलरली जब इनका फिलहाल चल रहा है स्क्रूटनी शादी इनकी जो है बिल्कुल सुनीता आहूजा के साथ, फॉलोइंग हर विड्रॉवल ऑफ अ डिवोर्स पिटिशन। ठीक है, ये मैंने आपको कल बताया था कि सुनीता आहूजा को पैप्स ने कैप्चर किया था, वो फैमिली कोर्ट से बाहर निकल रही थी एंड बाद में पता चला कि कोई तो डिवोर्स पिटिशन उन्होंने पहले डाली हुई थी वो इन्होंने विड्रॉ कर ली। एंड एज पर राखी सावंत और उनके जो है फोन कॉल के हिसाब से कि नहीं नहीं ये तो मतलब शादी करने को तैयार था इसलिए मैंने डिवोर्स पिटिशन पीछे ले लिया। आई डोंट नो, द होल मामला is very very confusing, but coming to Chi-Chi's part of it, now this notice warns media, digital platforms and individual against the misuse of inki identity including all the AI generated content and jitna bhi ye log keh rahe hai ki galat galat baatein phaila rahe hain ki mera inke saath chal raha hai ya unke saath chal raha hai, गोविंदा तो मना कर रहे हैं कि हमको वापस से कोई शादी वादी का कोई प्लान नहीं है। एंड इनके मैनेजर जो है उन्होंने कंफर्म किया है द विड्रॉल ऑफ द डिवोर्स केस एज वेल, एमिंग टू प्रोटेक्ट हिज रेपुटेशन एंड करियर पब्लिक स्पेकुलेशन के बीचों बीच में। और उसी में साथ साथ में कश्मीरा शाह जो कि इन लोगों के फैमिली से रिलेटेड है, अच्छा सबके इंटरव्यूज आ रहे हैं एंड एवरीबडी, ये अलग ही दृश्य तैयार हो गया यहाँ पे, हर किसी की अपनी अपनी तरफ की कहानी है। वो कह रहे हैं अगर नहीं रहना है उन दोनों को साथ में तो नहीं रहना है ना, मैं तो सुनीता के साथ खड़ी हुई, अगर वो कह रही है कि कुछ गलत है तो वो गलत ही है। अब बात ये है दोस्तों कि है क्या, चल कह रहा है और कौन क्या कितना सच बोल रहा है, we have absolutely no idea, but then the updates are kind of let them come in and we shall keep you posted on it. अब लगती है मिर्ची तो लगने दे, क्या कर सकते हैं, है ना। काय अब नेक्स्ट स्कूली नंबर 1 से यही वाला गाना। चीची क्या चल रहा है, गुड मॉर्निंग।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुबह की डोज ऑफ फन एंड फैक्ट्स, मस्ती का मंत्र विद आरजे अंतरा।
4: 8 बजकर हो चुके हैं 18 मिनट, रेडियो मस्ती 24/7 में अंतरा आपके साथ चल रहा मस्ती का मंत्र। एंड भाई यहाँ पर क्या चाहिए लोगों को, सिर्फ थोड़ी सी गॉसिप। 2 + 2 = 22 होता है ये जो हमारी इंडस्ट्री है बॉलीवुड वाली, इससे तो अब हमें इतने सालों में पता चल ही गया होगा। तो बात कुछ ऐसी थी कि जब ब्रह्मास्त्र जिसके 3 पार्ट्स है अपेरेंटली, अयान मुखर्जी जो है उन्होंने फर्स्ट वाली रिलीज की एंड वी ऑल वेंट लाइक ओके। अच्छा था, सुन के अच्छा लगा था कि रणबीर कपूर और उनकी वाइफ आलिया भट्ट दोनों साथ में काम करने वाले, बट ऑल ही हर्ड वाज शिवा शिवा शिवा, बस उतना ही पूरी मूवी में। आई थिंक दैट जस्ट स्टेड विद मी। बट वेल, इसका पार्ट टू, उसमें ये कहा जा रहा था कि इस बात को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दीपिका पादुकोण को किया जा रहा है रोप इन। नाउ इट बिकेम इंटरेस्टिंग एंड 2 + 2 = 22 इसलिए हुआ क्योंकि हिस्ट्री जो है, पास्ट जो है, हर किसी को बड़ा ही इंटरेस्ट आ जाता है कि ओहो हो, हो ये दोनों तो रह चुके हैं, एक्स रह चुके हैं यार, तो मतलब कैसा रहेगा इनका केमिस्ट्री जब ये एक साथ आएंगे। सो मे बी सिर्फ इतना देखने के लिए लोग यू नो थिएटर जाएंगे एंड पता करेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। अब क्या है कि जब ये बात बहुत ज्यादा हाथ से बाहर निकल जाती है तब मैनेजर्स को सामने आना पड़ता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैड हैपेंड। Recent reports were claiming that Deepika Padukone is all set to play a major role Ayan Mukherjee ki Brahmastra 2 mein, but now ab bilkul official confirmation aa chuki hai that she is not even associated with the project, not even for a cameo role, and inki jo spokesperson hai unhone clarify kiya hai that the reports jo hai wo jhooti hai, ekdam jhooti hai। Megan gossip banane ke liye कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, कहीं तक जा सकते हैं, और उसमें बस इतना डाल देते हैं रिपोर्टेडली, मतलब हम श्योर नहीं है बट इफ रिपोर्ट्स आर टू बी बिलीव्ड। नाइस वे, इंग्लिश काइंड ऑफ सेव्स यू एट टाइम्स। Coming up next is वो दुनिया जिसको हम कहते हैं बंबई नगरिया, फ्रॉम टैक्सी नंबर 9 to 11, विशाल ददलानी की आवाज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। गुड मॉर्निंग।

0: बाजू
1: ट्रैफिक अपडेट
2: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.
3: 8:28 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में रेडियो मस्ती 24/7 अंतर आपके साथ और यहाँ पे बिल्कुल लेकर आएंगे ट्रैफिक का अपडेट. व्हीकल ब्रेकडाउन इस घंटे आपको मिलेगा ऑन SLE टुवर्ड्स CTE आफ्टर लेंटो एवेन्यू. अवॉइड करें लेन नंबर 4. व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर ऑन PIE टुवर्ड्स ट्वास आफ्टर क्लेमेंटी. सो वेल अवॉइड करें लेन नंबर 3 और मिलेगा भारी भरकम यानी कि हेवी ट्रैफिक ऑन PIE टुवर्ड्स ट्वास. ये पिछले घंटे भी था और इस घंटे भी बिल्कुल बना हुआ है एट क्लेमेंटी एवेन्यू 6 exit. So well, ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट. कमिंग अप अ वेरी वेरी नाइस सॉन्ग. अलग ही फील देता है ये गाना. टॉकिंग अबाउट थोड़ी देर पहले आलिया भट्ट विद सेइंग शिवा शिवा ब्रह्मास्त्र बट आई लव्ड आलिया भट्ट इन गंगूबाई काठियावाड़ी. दिस इज मेरी जान मेरी जान. आहा क्या गाया है गाना. लेट्स गो.

0: 22 ruling the countdown. Ye hai Masti Top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, the latest and the brightest. The week's top chart busters.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: माइकी डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना।
3: मैं उठता।
1: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
5: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: कभी कभी ऐसी मासूम गलतियां होने लगती है लोगों से कि मैं क्या ही बताऊं, बट दिस वन इज रियली रियली फनी। ओके, 8:35 हो चुके हैं स्टूडियो क्लॉक में, रेडियो मस्ती 24/7 अंतरा आपके साथ, यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा। अच्छा, आपने कभी ऐसा किया है कि आपको जो है जब ऑनलाइन कोई चीज दिखती है एंड यू डोंट नो एज ऑफ नाउ कि इसको अलग से किसी कैटेगरी में सेव कैसे किया जाता है, तो आप उसको अपने आप को ही सेंड कर देते हो। आई एम श्योर वी ऑल हैव डन दिस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और कई सारे लोग अभी भी यही कहते होंगे कि भाई इसको बचा के रख लेते हैं, पता नहीं बाकी के और कितने हजार स्टेप हमें सीखने पड़ेंगे टू गेट टू नो कि इसको सेव कैसे किया जाए, बट देन वी कैन काइंड ऑफ फिगर इट आउट। कई बार क्या होता है, लोग ना कोई एक रैंडम नंबर ढूंढ लेते हैं और उसको बना लेते हैं अपना सेव करने का जरिया कि पता नहीं ये वाला तो कोई यूज नहीं कर रहा होगा तो इसी में भेजते रहो

रहो। आई हैव डन दिस बिफोर। सो वीरदास, आपको पता ही होगा, वीरदास जो है ये अपने एक्टर भी है, स्टैंड अप कॉमिक भी है एंड काफी कुछ करते हैं। तो कोई कोई एक आंटी जो है वो हर रोज जो है अपनी टू डू लिस्ट जो है वो वीरदास को सेंड करती रहती है, लाइक एवरी सिंगल डे, एंड दैट्स व्हाट ही हैज पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया। एंड कहते भाई मैं सच्ची में आई विश कि हमारी ये जो आंटी है उनको नाड़े वाला डंडा जो है वो जरूर मिल जाए। सो एवरी डे वेर एवर शी इज मेकिंग अ टू डू लिस्ट, शी इज सेंडिंग इट, लाइक वो डीएम कर रही है वीरदास को। बेसिकली वो अपने लिए सेव कर रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि ये किसी सेलिब्रिटी के पास जो है वो बहुत ही शिद्दत के साथ जा रहा है। तो उसमें लिखा हुआ ईमेल टू दिस पर्सन, ऑर्डर गिफ्ट फॉर नेहा, थ्रेडिंग, नेल पेंट, झाड़ू, जीरा, मेथी दाना, अजवाइन, स्कूटी में पेट्रोल, कैट फूड, छोटी वाली सुई, नाड़ा डालने वाली डंडी, ग्लू, फोल्ड लॉन्ड्री, फाइंड टीवी रिमोट। या एंड वीरदास इज लाइक आई रियली होप दैट she finds all of them like in the list. So apart from this lady, I think there is Veerdas who is keeping the track on her tab. एक बार जाके चेक कर लो, आपने कहीं किसी और को तो सेव करने के चक्कर में भेज नहीं दिया है। मितवा रेडियो मस्ती 24/7 पर। चलिए फिलहाल शंकर महादेवन एंड शफकत अमानत अली की आवाज, व्हेन दे गेट टुगेदर ऑफ कोर्स इट हैज टू बी अ लेजेंडरी गाना। गुड मॉर्निंग।

0: जिसकी याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: आमिर खान wondered.
4: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing. Yeah.
3: सलमान खान wanted answers.
5: कैसे किया ये?
3: R. Madhavan said.
6: Awesome. You're very good, yaar. Very well done.
3: And Boman Irani?
7: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
3: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
8: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
3: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer, People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
9: How do you know these things? Stop reading my mind.
10: हर ट्यूसडे एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
11: क्या करती है सुहानी, कैसे करती है सुहानी सुहानी, जो भी करती है बहुत ही सुहाना करती है सुहानी। एंड यस, सुहानी शाह, आई मीन शी इज राइट नाउ द ओनली वन हु हैज काइंड ऑफ केप्ट द एलिमेंट ऑफ जादू एंड यू नो ट्रिक्स एंड मेंटलिज्म, जो है ये सारा कुछ जो है सुहानी शाह जो है उन्होंने काफी संजो कर रखा हुआ है। एवरी सिंगल टाइम रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं अंतरा के साथ मस्ती का मंत्रा चल रहा है। जब मैंने उनके कोई भी वीडियो देखे हुए है, आई हैव बीन जस्ट लाइक शी थ्रोज मी आउट ऑफ द पार्क, लाइक कैसे भाई कैसे कर लिया है तुमने। एंड बेस्ट वन टिल डेट, लाइक आई टोल्ड यू बिफोर दैट दिस देयर वाज द स्ट्रीट टीवी प्रेजेंटर्स एंड दिस इज ऑल हैपनिंग लाइव। आई डोंट नो बिहाइंड द सीन्स इसमें क्या जाता है। इनफैक्ट बिकॉज आई गॉट सो क्यूरियस, नाउ जो है ना इंस्टा का AI जो है कभी कभी आपकी बातें सुन लेता है और वो आपको ऐसे ऐसे, देर आर पीपल हु आर ट्राइंग, दे हैव मेड वीडियोस हु आर ट्राइंग टू क्रैक दैट हाउ सुहानी डज द होल यू नो थिंग, बट आई डोंट वांट टू नो दैट। आई एम वन ऑफ दैट दोज पीपल कि मुझे पता है कि शायद इसके पीछे कोई ट्रिक है, बट आई लव इन दैट मोमेंट कि सुहानी करती है, इतनी स्विफ्टली करती है और क्या कमाल करती है। सो यस, सुहानी शाह शी इज गोइंग टू बी इन सिंगापुर, अपना जो है लाइव शो लेकर आ रही है। इट्स कॉल्ड स्पेल बाउंड, राइट। सो भाई अब जब आ रही है तो ये चीज लाइव विटनेस करने का मजा ही कुछ और होने वाला है। सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू विटनेस इट लाइव 20th of September, विच इज अ संडे वाला दिन, शाम को 6 बजे, आइए सब साथ में उठकर चलते हैं एंड जस्ट विटनेस द मैजिक अनफोल्ड राइट इन फ्रंट ऑफ आर आईज। एंड आई एम श्योर वंस वी लीव क्वेटा आयर पीपल्स थिएटर, हम सभी के दिमाग में होगा कि कैसे किया इसने भाई, कैसे कर लिया ये, बिकॉज एवरीबडी गेट्स लाइक माइंड ब्लोन। चाहे बमन ईरानी हो, देयर वाज आर माधवन हु वाज लाइक एक मिनट ये कैसे किया, देयर वाज दिस गाय जिसके मतलब उसने बोला कि क्या मैं जान सकती हूँ, वो ऐसे ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला रही है उनकी जिंदगियों से, इन लोगों की जिंदगियों से जिनका शायद नाता रिश्ता या फिर किसी भी तरह से सुहानी को उस बारे में कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। सुहानी शाह का जो है ये स्पेल बाउंड देखने बिल्कुल वहां पर पहुंची ये, लेकिन साथ साथ में छोटा सा यहाँ पे सवाल पूछूंगी, अगर आप ये सवाल मिस कर देंगे तो कोई बात नहीं, तो वैसे बहुत ही इजी सा है। व्हाट इज सुहानी शाह फेमस फॉर, ए मेंटलिस्ट, बी सिंगर या सी डांसर, ए बी या सी, कौन सा है आपका जो है जवाब वो मुझे 9158962 भेज दीजिए। एंड यस, यू कैन पार्टिसिपेट, आप इनका प्रोमो कोड भी यूज कर सकते हैं जस्ट इन केस स्टिक पे जाके, इफ यू वांट टू बाय द टिकट्स, व्हिच इज SSA21। वंस यू यूज दैट, ऑफ कोर्स वो जो आप सोच रहे थे ना कि अगर थोड़ा सा मिल जाता डिस्काउंट टाइप तो मजे आ जाते हैं ना, तो मजे आ जाएंगे डेफिनेटली। 20th सितंबर को मैजिकली मजे आएंगे. It is just going to be crazy insane. Do not miss it. Book your tickets right away. Sistik par available hai. Suhani Shah leaving us spellbound for sure.

0: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। Your daily scoop of what's hot, what's viral and what's worth knowing. Served fresh with great music and my unbeatable charm, you see. Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje, sirf Radio Masti, 24/7 Live Fan.
1: गुड मॉर्निंग। पहुंच चुके हैं 9 बजे के उस पार। इनफैक्ट 9 बजकर हो चुके हैं 5 मिनट। मस्ती का मंत्रा सुन रहे हैं आप अंतरा के साथ ऑन रेडियो मस्ती 24/7। वेल, सिंगापुर की एक अपडेट बिल्कुल नोट करने लायक बिल्कुल दे सकती हूँ आपको इस वक्त। यू नो दैट प्री सिंगापुर रिचुअल जो कि करना पड़ता है फ्लाइट पकड़ने से पहले, ऑफकोर्स पासपोर्ट निकालो, डिटेल्स देखो और SG अराइवल कार्ड जो फिल करना पड़ता है हमारे, मतलब जो जब कोई बाहर से आ रहा होता है, राइट? या ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट। सो ICA जो है वो ये प्रोसेस थोड़ा सा इजी करने वाले हैं। सो फ्रॉम tomorrow, which is August 26th, travelers can try a refreshed SG arrival card ka interface ICA ke website par, and one of the most useful additions is the passport scan ka autofill. Matlab passport samne rakh ke naam, passport details wagera bar bar type karne ka jhanjhat bilkul hata diya ja raha hai. Hota hai na autofill, ek bar scan kar diya to wo automatically jo information jis wale tab mein jani hoti hai wo wahan pe jaake fill ho jata hai. So passport scan ka autofill is currently available only for foreigners, but with this update, Singapore citizens, permanent residents and long-term pass holders will also get the feature alongside the existing SingPass information retrieval ka jo hai option hota hai. Ek aur interesting change jo hai, SG arrival card currently supports 12 languages, that's going up to 19 now. The 7 additions jo hai, wo hai Bahasa Indonesia, Dutch, Arabic, Spanish, Russian, Filipino and Italian. ICA जो है वो कह रहे हैं the interface itself is also getting a cleaner design and smoother navigation. Well, और साथ साथ में वो ये भी reminder दे रहे हैं because इसमें confusion काफी होता रहता है. SG arrival card is not a visa and submitting it through ICA is completely free. So yeah, कभी कभी होता है ना कि random website पे ले जाते हैं and you have to pay to somebody to do it for you and all those things. ICA has actually warned travelers about commercial website charging money for SGACK submissions. And you can submit it within 3 days including आपका arrival day before reaching Singapore. ये सारी प्रोसीजर और प्रोसेस हर किसी को पता है जो भी सिंगापुर में काफी सालों से रह रहा है. So basically सिंगापुर का इमिग्रेशन कह रहा है आना तो फॉर्म भर के ही है, बट चलो फॉर्म भरना थोड़ा और इजियर कर देते हैं. एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट सिंगापुर. हमेशा वो यही सोचते हैं कि जो है एग्जिस्टिंग वो तो बहुत ही आरामदायक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसको और कितना कंफर्टेबल कर सकते हैं. आई लव यू सिंगापुर, लाइक आई लव यू. गाना आपके लिए.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behan aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space, dear मस्ती, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
4: एग्जैक्टली ये वही रेडियो पे बैठे स्ट्रेंजर्स जो आपके दोस्त है, आज शाम को मिलेंगे डियर मस्ती दिल से के एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ 5 PM ऑनवर्ड्स। भूलिएगा नहीं, लेकिन फिलहाल कमिंग बैक टू गुड मॉर्निंग, क्योंकि यह ट्यूसडे मॉर्निंग विच मीन्स रेडियो मस्ती 24/7 पर चल रहा है मस्ती का मंत्र विद आपकी अपनी अंतरा। सो वेल, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी इस जनरेशन और आज कल की चीजों में इसका मुंह तोड़ जवाब जेन जी ही है। भाई जेन जी का एटीट्यूड ऐसा अनफिल्टर्ड है ना कि नहीं करना है तो नहीं करना है, हम 9 बजे के बाद काम नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे, हमें ऐसा नहीं चाहिए तो ऐसा नहीं ही चाहिए। I mean, चाहे अब वो उसका वास्ता वाइब से दे रहे हो, चाहे उसका वास्ता दे रहे हो कि आई एम नॉट काइंड ऑफ फीलिंग इट, जो भी हो भाई, जो है मुंह तोड़ जवाब जेन जी का ही है। Well, कुछ ऐसा ही ऐसा किस्सा जो है काफी वायरल हुआ, तो इन्होंने ये पोस्ट डाला कि मैंने अपने इंटर्न को कहा कि भाई कोर्ट पहुंच जाना 9 बजे सुबह टू मैनेज सम वर्क, एंड जेन जी इंटर्न जस्ट लेटिंग यू नो। सो भाई जेन जी इंटर्न बोलता है कि भाई ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि सुबह 9 बजे का टाइम उसका जिम का टाइम होता है। बट इवेंचुअली द जेन जी अग्रीड टू डू इट एज अ वन टाइम एक्सेप्शन। तो ये लिखते हैं कि एट दिस पॉइंट आई एम नॉट श्योर इफ आई एम हिज सीनियर, हिज जूनियर और हिज पर्सनल असिस्टेंट, कैन नॉट नॉर्मलाइज दिस। द थिंग इज कि भाई चेक तो जेन जी के साथ भी कर ही लेना चाहिए था ना कि भाई उसके पास टाइम है नहीं है। ये कितना मतलब ये भी कर दिया, बता भी दिया कि चलो ठीक है 9 बजे का मेरे को एडजस्ट करके जिम आना तो पड़ेगा, लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, दिस इज लाइक वन ऑफ ओनली, है ना। I mean, कभी कभी कहते हैं ना कि हम लोग डियर मस्ती में बात करते हैं कि दैट बाउंड्रीज आर हेल्थी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। अगर जेन्सी अगर ये काम हमें दिया होता कि

0: बाजू।
1: ट्रैफिक अपडेट।
2: हनी सानू भी छुट्टा दे दो है ना। फॉर गुड लॉन्ग टाइम आई थॉट कि छुट्टा क्यों मांग रहा है, लंबोर्गिनी चलाता है, छुट्टा कौन मांगता है। या दिस इज व्हाट हैपेंस। लगती मेरी वाइफ पूरी पंजाबी है लेकिन आती मुझे उतनी ही है। वेल चलिए चलते हैं कि जानते हैं 9:32 AM हो जब हो गए हैं तो सिंगापुर की सड़कों का क्या है हालचाल। व्हीकल ब्रेकडाउन आपको मिलेगा ऑन AYE टुवर्ड्स MCE आफ्टर यू आर चिंग रोड। एक एक्सीडेंट की खबर है ऑन PIE टुवर्ड्स अचानकी एट थॉमसन रोड एक्सिट, और एक और व्हीकल ब्रेकडाउन की खबर है ऑन VKE टुवर्ड्स PIE आफ्टर मांडा रोड। सो वेल ये था इस घंटे का ट्रैफिक अपडेट। देन नाउ करते हैं मिलिया विद द अगला गाना। मस्ती का मंत्रा सुन रहे हैं आप अंतरा के साथ। गुड मॉर्निंग।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

0: Your weekly mood lift mantra, only with RJ Antra.
1: सिर्फ एक चीज करने से क्या होगा, यू हैव टू बी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. और स्पेशली जब ऐसा लग रहा हो कि ये वाली एरिया में आजकल कुछ बहुत हो नहीं रहा है. रेडियो मस्ती 24/7 अंतराप के साथ यहाँ पे चल रहा है मस्ती का मंत्रा. आई थिंक कार्तिक आर्यन ऑल्सो थिंकिंग अबाउट इट एंड वेरी वेरी सीरियसली, क्योंकि खबर कुछ ऐसी आई है दैट कार्तिक आर्यन ने जो है हाल ही में लॉन्च किया है डोपामीन स्टूडियोज. यस, डोपामीन स्टूडियोज है इनका बिल्कुल ब्रांड न्यू production house, and he has teamed up with Kabir Khan on inspirational sports drama. So he can title sports drama jo hai, it marks their second collaboration. Last inhone saath mein banayi thi Chandu Champion, which won Kartik Aaryan apna first ever best actor ka national award. And it's ye jo dusra sports drama ban raha hai jo ki Kartik Aaryan ke khud ke production house ke banner ke under ban raha hai, is currently being shot across Mumbai and कश्मीर. सो बेसिकली इस मूवी में कहा जा रहा है कार्तिक इज गोइंग टू प्ले दिस किक बॉक्सिंग के कोच विद द फिल्म बेस्ड ऑन एलिमेंट्स फ्रॉम कश्मीरी एथलीट ताजमहल इस्लाम की जर्नी. सो वेल, गुड गुड भाई, ये ऐसे तो प्लानिंग ही तो ऐसे की जाती है, क्या कहते हो. आई थिंक एवरीबडी, एवरी सिंगल पर्सन हु इज इन दिस इंडस्ट्री, जैसे ही थोड़ा सा सेटल हो जाते हैं, दे काइंड ऑफ इन्वेस्ट या तो प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं या फिर वो यू नो अपने रेस्टोरेंट्स खोल लेते हैं. कुछ ना कुछ ऐसे चलते रहना चाहिए. एंड आई थिंक कार्तिक आर्यन अपनी सिनेमा की जिंदगी के उस पड़ाव में बिल्कुल आ चुके हैं, क्योंकि मूवी उतनी आ नहीं रही है ना, तो समझ रहे हो ना आप, है ना. तो कुछ बैकअप प्लान तैयार करें और फिर हवन करें. हवन करेंगे करते हुए शंकर एहसान लॉय कमिंग अप नेक्स्ट फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: एक नया ट्विस्ट, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा।
1: आओ सांभा आओ, आप आओ और मैं जाऊँ, बस ऐसा ही कुछ होने वाला है फिलहाल। गुड मॉर्निंग रेडियो मस्ती 24/7 पर सुबह 7 बजे से गुड मॉर्निंग बोलती हुई मैं अंतरा और मस्ती का मंत्रा। एंड भाई अब बजने वाले हैं 10, विच मीन्स दैट हम सभी का एक घंटे का ब्रीदर जो है, वेल डिजर्व्ड ब्रीदर, वो आने वाला है मस्ती म्यूजिक कैफे के नाम से। एंड देन ऑफकोर्स कौन आएगी, नुपुरवा आ जाएगी, दैट इज राइट, मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आप उनके साथ थोड़ा वक्त बताइएगा, फिर हमारी मुलाकात होगी आज शाम को डियर मस्ती दिल से। पर विद आप ही चुटिया जो हम पढ़ेंगे एंड उसके बारे में बात करेंगे। सो वेल, इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत। यू हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, आई होप यू एंजॉय द शो बिकॉज आई एज ऑलवेज एंजॉयड एवरी सिंगल मोमेंट ऑफ माइन विद यू। आप हुए इतने खास, आप हुए इतने अच्छे, है ना। इसी स्माइल के साथ, इसी कॉम्प्लीमेंट के साथ आई होप कि ये सारा का सारा दिन आज का जो है ना बहुत ही अच्छा जाए। लेट अस टेक इट वन डे एट अ टाइम, आज अच्छा जाए फिर कल बोलूंगी कल अच्छा जाए, ऐसे रोज चलता रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, सी या।

0: नाचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं, और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज, एंड दिस इज द साउंड ऑफ आवर नेशन. This is what makes me love my zindagi. So on that note, ladies and gentlemen.

0: आएंगे
1: न करण अर्जुन आएंगे न ही आरजेएस आएंगे, फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
0: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें।
4: I love you, रसना।
3: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Musty 24/7 Live.
5: मेरे करण अर्जुन आएंगे
0: ना, करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: दुनिया में कितना कुछ चल रहा है, मतलब मैं अपने पर आ गई आपको बताने ना तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कि दुनिया के उस कोने में क्या चल रहा है। मतलब ये फैक्ट ही कितना इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, लेकिन फिर भी हम इन सारे फैक्ट्स को भूलकर अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, और ये सबसे खूबसूरत चीज है। मतलब अगर हम दुनिया की भी फिक्र करने लगे तो यार वो किसकी फिक्र करेंगे। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर वंस अगेन आपसे मुलाकात करने आ चुकी है। एंड द पॉइंट इज कि मैं भी ना ज्यादा लोगों की फिक्र नहीं करती। मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑफिस टाइम पर पहुंचना और भी बहुत सारी बातें क्या करनी है आपसे इनके बारे में सोचना, और यहाँ स्टूडियो में बैठकर अपना मी टाइम या वी टाइम एंजॉय करना, और आगे क्या प्लानिंग श्लानिंग कर सकते हैं इसके बारे में सोचना। बिकॉज जब भी हम एक्स्ट्रा नॉइज अपनी लाइफ से हटा देते हैं ना तो उतने ज्यादा ही खुश रहते हैं। एनीवेज आई होप कि आप भी अपनी लाइफ से एक्स्ट्रा नॉइज को हटाएं और बस काम की बातें और काम की टेंशन ले। यार रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर बहुत सारी बातें बहुत सारे गाने लेकर आ चुकी है, सो डोंट गो एनीवेयर। आती हूँ मैं एक नई बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी लेकर जो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टका टक जोश में रहो।
2: अगर आप किसी हॉलीडेज में गए हैं और आपने गलती से भी लैपटॉप खोल लिया है, गलती से भी अपने बॉस का कॉल पिक कर लिया है, फिर आपको रियलाइज हुआ है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर आपने सारी चीजें किनारे रखकर अपना हॉलीडे एंजॉय किया है, तो डेफिनेटली ऑन दिस नोट आपने इस मूवी का जिक्र जरूर किया होगा। सो हेलो हाय, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर हमेशा की तरह आपके साथ बनी हुई है और आपको याद दिला रही है कि जब जब हमने ना चिलिंग मोमेंट में अपने वो कहते हैं ना हैवी मोमेंट, बॉसेस, करियर की लाइफ से जुड़े हुए जो मोमेंट्स हैं उनको साइडलाइन कर दिया है, तो हमें याद आई है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी की, राइट? तो देखो इस मूवी ने हमें बहुत कुछ सिखाया था और थोड़ा सा हमें ना बिगाड़ भी दिया था कि काम वाम तो होते रहेंगे, लाइफ जियो पहले। हाँ, सो हर कोई इस मूवी का सीक्वल चाहता है, पर ये पॉसिबली ऑन पेपर तो आ रहा है लेकिन प्रैक्टिकली ये शूट पर नहीं आ पा रहा है। अंजे इसकी जो डायरेक्टर हैं जोया अख्तर यानी फरहान अख्तर की सिस्टर, इन लोगों ने मिलकर ये मूवी बनाई थी। अब सुनने में आ रहा है कि भाई हो सकता है इस मूवी पर काम जल्दी शुरू हो बिकॉज इसकी प्री हाइप ऑलरेडी बहुत बढ़ चुकी है। हाँ भाई, तो भाई एक हाइप और हमारे आसपास चल रही है कि हमारे ऐप का नाम कैसे बदल गया है, तो याद दिलाना चाहूंगी कि बस नाम में ही बदलाव है, हम में नहीं। सो ऐप नेम इज मस्ती मीडिया 24/7। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर भी हमारे यूजर नेम चेंज हुए हैं। फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क से हम मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। मैं आरजे नुपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आपके साथ है।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? जब हम ना बड़ी से बड़ी गलती करके आते थे तो घर में छिप जाते थे, है ना, इस एक्सपेक्टेशन में कि मम्मा पापा तो बचा ही लेंगे, राइट? और ये आप बचपन में करें या पचपन में करें, ऐसा ही साउंड करता है। मतलब आपने कभी मम्मी के आंचल में पीछे छिपकर किसी का गुस्सा जो है वो छुपाया है? हाँ? देखो, हर कोई ये करता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि सबसे सेफ स्पेस जो होती है ना, वो हमारे पेरेंट्स का घर होता है। उससे ज्यादा प्योरिटी हमें कहीं नहीं मिल सकती। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। एनीवेज, इसका एक बड़ा वर्जन आपको बताती हूँ। रणवीर सिंह जो है डॉन मूवी के थर्ड पार्ट से एग्जिट कर गए थे। उनका ऑल ऑफ सडन एग्जिट करना अपने आप में फरहान अख्तर के लिए बहुत बड़ा लॉस

क्रिएट कर गया था। सो रणवीर सिंह से उनकी ऐसी दुश्मनी हुई कि वो ना सेटलमेंट करने के लिए भी नहीं बैठे। उन्होंने एक अच्छा खासा ऑफिशियल लेटर 45 करोड़ का जो फाइन है ना वो उनके यहाँ भिजवा दिया और उनको अनप्रोफेशनल भी कहलवा दिया। इवन फिल्म फर्टिनिटी ने भी रणवीर सिंह को अपनी फर्टिनिटी से बाहर निकाल दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब इन सारी चीजों का सलूशन कौन निकालने वाला है? रणवीर सिंह के फादर साहब जगजीत सिंह, वो जो है वो एक सेटलमेंट पे बैठेंगे और सबको एक इक्वल पार लेवल पर लाकर एक कोई तरीका निकालेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बोला ना, सबसे सेफ स्पेस हमारी पेरेंट्स की स्पेस होती है, उससे बड़ा सल्यूशन कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर हमने भी एक सेफ स्पेस क्रिएट करी हुई है। डू यू रिमेम्बर? एवरी ट्यूसडे 5 PM ऑनवर्ड्स डियर मस्ती दिल से शो आपको एंटरटेन करने के लिए हम लाते हैं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर, आती हूं मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की तने मम्मा
5: ड्यूटी।
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान। जोश में रहो।
2: You know what? I have a cat है ना, और मैंने ना एक रील में देखा था कि आप अपनी कैट को थोड़ा ऊपर से कहीं से भी फेंकेंगे ना, मतलब थोड़ा सा उल्टा करके भी फेंकेंगे ना, तो वो ऑन फ्लोर एकदम करेक्ट पोजीशन पे आ जाएगी। एंड मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपनी कैट के साथ कर लिया। मैंने उसके चारों पांव उल्टा करके अपनी गोद में लिया और उसको नीचे फ्लोर पे, मतलब थोड़ा सा कुशन्ड फ्लोर था है ना, उसमें थोड़ा सा फेंका। अरे वो एकदम धांसू स्टंट करते हुए ना अपने चारों पांव पर आ गई। मैंने कहा वाह बेटा वाह, तुमने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। एनीवेज मैं आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और बहुत वक्त से जो अपना नाम रोशन नहीं कर पा रहे, मतलब उनका नाम तो रोशन है, अपना काम रोशन नहीं कर पा रहे हैं, वो है सलमान खान। राइट, आई नो, नो मतलब ऑफेंसिव कॉमेंट्स, आप सलमान खान के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बताइए ना, इन्होंने पिछले कुछ वक्त में कब कोई अच्छी मूवी दी है हमें? हाँ, तो ये अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस हो चुका है। तो अब सलमान खान जो है पीछे नहीं हट रहे हैं। सलमान खान एंड नयनतारा स्टारर एक एक्शन मूवी जो है उस पर काम किया जा रहा है, और इस एक्शन मूवी में जो धुरंधर मूवी के एक्शन डायरेक्टर्स रहे हैं उनको रिक्रूट भी कर लिया गया है, और स्टंट्स ज़्यादा होंगे, बॉडी डबल्स भी जो है ना उनका वॉल्यूम कम रखा जाएगा। सलमान खान खुद एक्शन करने वाले हैं और उस मूवी का टाइटल होने वाला है मॉन्स्टर। राइट, नाम थोड़ा हॉलीवुड है लेकिन काम पूरा बॉलीवुड ही होगा, बिकॉज सलमान खान है इसमें यार। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज इन पर आपके साथ, टोन गो एनीवेयर, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: मैंने तो अभी से सोच लिया है, एक बढ़िया सी रिस्ट वॉच जो है ना, वो मैं बदले में मांगने वाली हूँ। एंड आई होप मेरा भाई मेरा शो सुन ले तो वो पहले से खरीद के ले आए, वरना रक्षाबंधन पे हमारे यहाँ सीन ऐसा होता है कि राखी वाखी बन गई, शगुन अगुन मिल गया, जाओ भाई के साथ जाओ, गिफ्ट खरीद के आ जाओ। मतलब आजकल जमाना बदल गया है यार, अपनी पसंद से हर कोई चीजें लेना चाहता है, राइट? क्या आप भी रक्षाबंधन को कुछ ऐसे ही मॉडिफाई कर चुके हैं? जरा बताना रेडियो मस्ती पर मैसेज करके। हाँ जी, फिलहाल इन मॉडिफिकेशंस के साथ आपको क्या जरूरी चाहिए होगा, फ्लावर्स वगैरह चाहिए होंगे, राखियां चाहिए होंगी, पूजा की सामग्री चाहिए होगी और भी बहुत सारी चीजें। तो इस बार सिंगापुर में रहते रहते आप ऑनलाइन भी राखी पूजा लुम्बा की तैयारियां कर सकते हैं, बिकॉज ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप अब ऑनलाइन भी अवेलेबल है jyoti.com.sg पर। सो डेफिनेटली अपनी रक्षाबंधन को और खास बनाएं और जो भी आपकी विश लिस्ट है उसे कार्ड में ऐड करके ऑर्डर करें, बिकॉज आपको तो पता ही है बस राखी यूं आ गई, यूं आने ही वाली है। हाँ, आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर, मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट व्हाइल।
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
5: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन, राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
6: तेरे को बहुत मजा आता है ना सीधा साधा लोगों को फूल करने में।
7: तू भी तो उसको फूल करती है, लव मेरे को करती है और घूमने को उसके साथ जाती।
6: ओह शट अप, एक दिन गॉड तुमको बहुत पनिश करेगा। क्या हुआ?
7: यू आर राइट, चींटी बनकर काटा।
6: चुइंग,
7: पनिशमेंट ओवर। ए अभी चलना, काहे को इतना भाव खाती है? आई लव यू यार।
6: तू ऐसा कितनी लड़कियों को बोला?
7: हां सिर्फ तेरे को सैंड्रा, आई मीन सुजी, सिर्फ तेरे को रोजान, मेरी लैला।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, bahno aur bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में
0: आजकल का जमाना ज्यादा क्रूअल हो गया है या फिर हम ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं या फिर ये जेन जी जेन अल्फा क्या कहना चाहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ। अच्छा, आप अपने जमाने में अपने दोस्तों के साथ जब बर्थडे सेलिब्रेट करते थे तो किस तरह से करते थे जरा बताइए। हाँ, मतलब मैं अपनी बात करूं तो यार एक पैटीज आ जाती थी, एक पेस्ट्री का स्मॉल साइज आ जाता था, ज्यादा से ज्यादा समोसा आ जाता था, गोलगप्पे आ जाते थे और एक कोल्ड ड्रिंक आ जाती थी। मतलब फुल ऑन पार्टी पार्टी इसको हम पार्टी कह भी देते थे, लेकिन अब जो ये डेफिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा बदल गई है। मतलब ये सब करने में तो एम्बैरेसिंग लगेगा यार। सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आर चैनल पर आपको बताना चाहेगी कि हर बदलता हुआ ट्रेंड ग्लोरीफाई करना नहीं चाहिए। और ये जो होता है ना बर्थडे बम्स देने वाला जो ट्रेंड है ये तो बिल्कुल खराब है यार। मतलब मिलेनियल्स के अंदर तो फिर भी थोड़ा सेंसिटिव पार्ट बचा हुआ है कि अगर आपको कोई बर्थडे बम्स दे रहा है तो बहुत प्यार से देगा, दूर से लगेगा कि बहुत आपको मार रहा है, लेकिन बर्थडे बम्स जो है ना वो आपको फील नहीं होंगे, है ना। लेकिन रिसेंटली एक आप कह सकते हैं 10 साल का बच्चा है, ठीक है, वो अपने दोस्तों से मिलने गया और उसके दोस्तों ने बर्थडे बम्स के नाम पर इतनी लाते घूसे उसे मारे ना कि उसकी पूरी पीठ लाल पड़ गई और पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर ये फिक्र जताई कि क्या ये सब होना चाहिए। स्टिल अ क्वेश्चन यार। हाँ, मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। फिलहाल ये क्वेश्चन कि हमारा नाम बदल चुका है तो उसका जवाब हमने आपको दे दिया है। ऐप पर हमारा नाम हो चुका है मस्ती मीडिया 24/7, फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। सिर्फ नाम बदला है भाई साहब और कुछ नहीं। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
1: आपके ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जिसकी सुई ना एक जगह अटकती है कि तुमने गलत प्रोनंसिएशन कैसे लिया, गलत स्पेलिंग कैसे लिखी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर आपके साथ। एंड यू नो व्हाट, मुझे ऐसे लोग बड़े पसंद हैं जो चलते फिरते मेरे प्रोनंसिएशन भी ठीक कराते रहते हैं। मतलब मुझे लगता है कि यार स्कूल में फीस क्यों दी है जब प्रैक्टिकल नॉलेज बाहर निकल कर ही मिलने वाली थी। हाँ, जोक्स अपार्ट, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपड़ा को बताना चाहेगी, ऐसे लोग अब सुर्खियां बटोर रहे हैं। हाँ जी, ऐसे लोगों के ऊपर ट्रेंडिंग वायरल बातें निकल कर आ रही है। इंडिया के चेन्नई स्टेट की बात करें तो वहां पर एक लड़की ना एक रेस्टोरेंट से बाहर इसलिए आ गई क्योंकि वहां की कॉफी तो महंगी थी लेकिन उन्होंने हर चीज की स्पेलिंग भी गलत लिख रखी थी। हाँ जी, मतलब इमेजिन कीजिए, जो वेजिटेरियन फूड का मेन्यू है ना उसमें वेजिटेरियन की स्पेलिंग खराब है, और जो हॉट और नॉर्मल कॉफी का पूरा मेन्यू है ना उसमें कॉफी की स्पेलिंग गलत है। हा? और जो पास्ताज हैं वो सारी जो स्पेलिंग्स है वो भी खराब है। तो उसे इतने इरिटेशन मची वो मेन्यू देखकर कि वो वॉक आउट कर गई उस कैफे से, और ये बोल कर कि हाँ भाई इतनी महंगी कॉफी है मैं तो दे दूंगी, पर लेकिन एटलीस्ट चीजों के नाम तो सही लिखो। हाँ।

तो भाई बड़े बड़े देशों में ऐसी बातें होती रहती है। आपके आसपास कोई ऐसा शख्स हो जरूर बताइएगा हमें जो चीजें करेक्ट पे करेक्ट करता रहता है। 9151 8963 हमारा नंबर। आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: माइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन टकाटक जोश में रहो।
2: You know what? हमारे घरों में हमेशा आपको दो दो कैटेगरीज मिलेंगी। किस चीज की भाई? कटलरी की। एक तो हमारे रोजमर्रा वाली कटलरी है ना, दूसरा मेहमानों वाली कटलरी है। एंड यू वोंट बिलीव ना, मेरा कभी कभी ना बहुत ज्यादा मन करता है कि जो कटलरी मैंने सिर्फ गेस्ट के लिए कॉर्नर पे रखी है ना या सजा के रखी है ना, मुझे उसमें ही खाना चाहिए। और ऐसी जिद करके मैं खा भी लेती हूँ यार, और क्या। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आज नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। एंड द पॉइंट इज कि हम तो अपने घर की कटलरी को उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हैं जितना कि फॉरनर्स दे रहे हैं, राइट? अगर हम अमेरिका की बात करें तो रिसेंटली एक स्टोर पे इंडियन जो अपनी कटलरी है ना, स्टील के प्लेट्स, स्टील के बाउल्स, स्टील के जग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये पूरा रेंज लगा हुआ था। उसने लिटरली अपना वीडियो बनाते बनाते पता है क्या बोला है? तो उसने पता है क्या बोला? ये है क्रोम प्लेटेड प्लेट्स, क्रोम प्लेटेड बोल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसने हर चीज को क्रोम क्रोम बोल करना अपने टर्म्स ऐसे यूज करे ना कि उसका जो प्राइसिंग है ना वो अपने आप में 100 गुना ज्यादा नजर आ रहा था। सो डेफिनेटली आपको अपने घर के नॉर्मल स्टील वाले बर्तन ना अंडर एस्टिमेट नहीं करने चाहिए, बिकॉज किसी के लिए वो बहुत खास है। बाय द वे, एक खास बात और है कि हमारा नाम थोड़ा सा बदल गया है। बिल्कुल, मस्ती मीडिया नेटवर्क आपको हमेशा एंटरटेन करता है, दैट्स व्हाई हमारे ऐप का नेम है मस्ती मीडिया 24/7। एंड फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से हम मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। मैं आरजे नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मिट जान।

मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रगल, पता है, इंसान के लिए वही होती है जो वो अपनी आंखों से देखे, लेकिन जब वो स्टोरी नरेशन के थ्रू किसी और की स्ट्रगल सुन रहा होता है ना, तो वो बहुत डाउट कर रहा होता है कि मुझे नहीं लगता इन्होंने इतनी स्ट्रगल करी है जितनी मैंने करी है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है यार, और जिस तरह से सेलेब्स इसे ग्लोरीफाई करके बताने लगे हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर से जो हमारा विश्वास है ना, वो भी उठता जा रहा है। हां जी, डेफिनेटली मैं आरजे नूपुर रेडियो मस्ती 24/7 लाइफ पर आपके साथ, और बताना चाहूंगी कि यार हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल तो होता ही होता है ना। मतलब सबने अगर उतार चढ़ाव देखे हैं तभी वो अपनी लाइफ में एक मोमेंट को एंजॉय भी कर पा रहे हैं, अदरवाइज क्या है। सब कुछ अच्छा अच्छा रहेगा तो आपको वो ना मिर्च मसाला ही नहीं मिलेगा कि अरे मैं किसी को क्या बताऊं या खुद क्या फील करूं। तो रिसेंटली अमिताभ बच्चन, जो कि एक आप कह सकते हैं महानायक हैं बॉलीवुड के, मतलब सिर्फ फिल्मों की एक्टिंग की बात नहीं, रियलिटी शो में एज अ होस्ट भी वो इतनी शानदार तरीके से काम करते हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं, है ना। इनके नाम पर शोले, दीवार, मोहब्बतें, आनंद, सिलसिला, बहुत सारी मूवीज है, लेकिन रियलिटी शो में भी इनका जो डायलॉग डिलीवरी होता है, क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, वो बहुत अलग अंदाज होता है। तो इन्होंने बताया कि पुराने दिनों में एक बार ये किसी की गाड़ी उधार लेकर जल्दीबाजी में शूटिंग के लिए सेट पर पहुंचे, और वहां पे जो डायरेक्टर था ना, वो गेट पे ही खड़ा था, उसने तुरंत ही उन्हें वहां से भगा दिया कि तुम्हारे अंदर अगर इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं है तो तुम मेरे किसी काम के नहीं हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तुम इतने लंबे हो, तुम्हें बोलना नहीं आता, तुम्हारी इतनी भारी आवाज़ है, बहुत सारे ताने इन्होंने सुने हैं। उसके बाद इनकी जो किस्मत है और मेहनत है वो बदल गई है, राइट। आरजे नूपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं जस्ट इन अ शॉर्ट वाइल।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति.com.sg।

देखो सबको यहाँ नंबर वन आना है, सिर्फ कंटेंट वाइज नहीं, सिर्फ एक्टिंग वाइज नहीं, बल्कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वाइज। एंड जी ये जो सिनेमा नगरी है ये कमर्शियल था, है और रहेगा। वो बात अलग है कि अब हमें पता चलने लगा है कि ये लोग सिर्फ ना हम लोगों से जो होता है ना तब टिकट्स वगैरह खरीदवाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। सो अल्टीमेटली आजकल कोई भी काम होता है इस महंगाई के ज़माने में वो तो यार प्रॉफिट के लिए ही होता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब अवॉइड ही कर दो। सो मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपको बताना चाहेगी कि यश स्टारर टॉक्सिक मूवी जो अपने आप में वॉयलेंस एक्शन कैटेगरी में बहुत ऊपर बोली जा रही है, तो इसने यूके के जो रूल्स है ना उसके हिसाब से धुरंधर को भी पीछे छोड़ दिया है। हाँ जी मतलब धुरंधर को मिले थे 5 में से 3 स्टार्स फॉर द वॉयलेंस, और वो जो भी होती है ना कैटेगरी इनकी इंजरी कैटेगरी भी होती है कि किस लेवल पर एक्शन दिखाया जा रहा है और किस तरीके से इसमें ये सब दिखाया जा रहा है, तो उस लेवल पर उस हिसाब से 4 रेटिंग मिली है 5 में से टॉक्सिक मूवी को। सो द पॉइंट इज कि ये जो मूवी है ये और ज़्यादा एक्शन से भरपूर होगी और ज़्यादा इसमें आप चीज़ें देखने वाले हैं। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुप्रदीप साइड, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

You know what, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जब हो रही होती है ना, तो हमें लगता है कि ये तो पहले भी हो चुका है. अरे ये जो है ना, ये तो डेजा वू है, मतलब ये लाइफ में हो चुका है. लेकिन जब बात आती है फ्यूचर प्रेडिक्शंस की, माइंड रीड करने की, तो थोड़ा और ज़्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट जुड़ जाता है कि इसको कैसे पता कि मेरे एटीएम का पासवर्ड क्या है, इसको कैसे पता मेरे फ़ोन नंबर के लास्ट के चार शब्द कौन से हैं. अरे अरे अरे अरे, मतलब आप कह सकते हैं ना कि क्लाइमेक्स बहुत ही सॉलिड होता है. तो ये जो माइंड रीडिंग की कला है, ये है किसके अंदर? सुहानी शाह. हाँ जी, ये अपना शो स्पेल बाउंड लेकर आ रही हैं सिंगापुर में. 20 सितंबर 6 PM ऑनवर्ड्स क्रेटा अय्यर पीपल्स थिएटर, क्रेटा अय्यर रोड सिंगापुर में आप जाके अटेंड कर सकते हैं. इसके जो टिकट्स हैं सिस्टिक सिंगापुर पे अवेलेबल हैं.

सो ग्रैब योर टिकट्स नाउ, लाइव इस शो को एंजॉय करो इंग्लिश में एंड डेफिनेटली यू गोना रिमेंबर. रेडियो मसी 24/7 लाइव, फिर मैं आरजे इन पर आपके साथ. डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल.

सोचिए आपके घर में वो गेस्ट आने वाले हैं जिनकी खातिरदारी में आप इत्तू सी भी कमी अच्छी नहीं लगने वाली आपको, और ना आप इत्तू सी भी कमी छोड़ोगे। रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे अनुपम मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ, और वो गेस्ट जो डेफिनेटली हमारे घर पधारने वाले हैं या फिर आप किसी और के घर उनसे मिलने जाने वाले हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट गणपति बप्पा। गणेश चतुर्थी आने वाली है और ऐसे में आपको खूबसूरत से चेहरे वाले हमारे घर के, वो कहते हैं ना, रूल्स के अनुसार हर साइज में, हर चेहरे पर इमोशंस के साथ, हर कैटेगरी के, हर कलर के अलग अलग पोशाक के साथ आपको गणेश जी के आइडल्स मिल सकते हैं सिंगापुर में, एंड डेफिनेटली घर बैठे बैठे भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड मैं बात कर रही हूँ ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप की, जो आपके लिए हमेशा आपकी पूजा को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पूजा सामग्री तो लाते ही हैं, बट गणेश जी के एन नंबर ऑफ वैरायटीज भी लेकर आए हैं। एडवांस बुकिंग्स के लिए एंड आइडल्स के हर तरह के एक्सप्लोरेशन के लिए विजिट कीजिए ज्योति.com.sg। मैं आरजे अनुपम मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
5: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
6: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
7: Oh my God, आपको ये अभी भी फिल्मी कहानी लगती है कि एक घर से लड़के की फोटो लड़की के घर जाएगी और लड़की फोटो देखकर लड़के को पसंद कर लेगी, फिर घर वाले आपस में बैठकर बातें कर लेंगे और उसके बाद शादी वाला दिन आ जाएगा। आपको अभी भी लगता है कि ये कहानी जो है फिल्मी है? नहीं नहीं नहीं नहीं। अगर मैं इंडिया के छोटे कस्बों की बात करूँ, गाँव की बात करूँ, तो इन सभी जगह आज भी ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मतलब बदलते बदलते बहुत सारे रिचुअल्स बदल गए हैं, लेकिन ये चीज अभी भी स्टैब्लिश है। और इसका एक बहुत बड़ा वर्स्ट रिजल्ट जो है ना, वो रिसेंटली सोशल मीडिया पर निकल कर आया है। बताती हूँ, इंडिया के पंजाब के फिरोजपुर सिटी का ये इंसिडेंट है जिसमें ब्राइड ने साफ मना कर दिया शादी करने से। क्यों? क्योंकि उसे बाय द टाइम बारात देखकर रियलाइज हो गया कि जिस लड़के की फोटो उसके पास आई थी कि ये लड़का है जिससे तुम्हारी शादी करी जा रही है, वो लड़के की फोटो और वो लड़का जो घोड़ी चढ़कर आया था, इन दोनों में दिन रात का अंतर था। तो भाई ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर देता है, बहुत ज्यादा हसल क्रिएट कर देता है, और वो लड़की खड़े हाथ अपनी शादी कैंसिल कर देती है। ओ भाई, ओ भाई। एंड जब मामला पुलिस तक पहुंचता है तो चीजें समझी जाती हैं और एट लास्ट इस शादी को कैंसिल कर दिया जाता है। तो फिल्म्स जो है ना, वो ऐसे रियल लाइफ इंसिडेंट्स को देखकर ही बनती है। अपने मन से मनगढ़ंत कहानियां नहीं बनती है, कुछ कुछ चीजें होती है, बट ये वर्थ इट मसाला है फॉर द मूवी, राइट? चलिए ऑन दिस नोट मैं आपको एक वर्थ इट बात बता देती हूँ। रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर जो आप हमें सुन रहे हैं, हमारे ऐप का नेम आपको अलग दिखाई देगा, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। एंड फेसबुक पर रेडियो मस्ती 24/7 या मस्ती मीडिया नेटवर्क नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। सो डेफिनेटली नाम में क्या रखा है भाई साहब, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट आपको दिन भर मिलेगा। मी आरजे नुपुर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए
0: नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे। Not all music is loud. Some songs just sneak in. What makes you smile? Hum along and feel good. Welcome to Masti Unplugged, your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
2: Purush nahi. Mahapurush hai. Mahapurush.
1: वेंसडे को मूड डाउन हो गया? कोई बात नहीं, हमारे पास उसका भी जुगाड़ है। मिडवीक ब्लूज, जहां काम की चिंता छोड़ो और हमारे साथ मस्त हो जाओ। फिल्मी बातें, मस्ती मोमेंट्स, थोड़ा छेड़ना और पंगे लेना भी, क्योंकि लाइफ सिर्फ काम के लिए नहीं है मेरे दोस्त। ट्यून इन एंड पावर थ्रू द वीक विद मिडवीक ब्लूज ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आओ मूड चेंज करें।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hu.
4: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: नाचने का मन है,
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: Your Musti Music Cafe is open. Freshly brewed beats.

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूब पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे। फिलहाल तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
3: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
4: चेक इट आउट।
5: Monday blues? Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates, aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 AM onwards.
3: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network, Singapore.

0: Your musty music cafe is open. Freshly brewed beats served hot and back to back.
1: कुछ पुरानी धुने, कुछ भूली बिसरी यादें,
2: किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
1: कोई आवाज, कोई साज, सिनेमा की दुनिया के किस्से रुलाते, हंसाते, उदासी भरे, खिलखिलाते किस्से, समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेजेंड्स फिर से।
3: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
4: भाई की डन है मम्मा।
5: ड्यूटी
6: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
5: मैं उठता था।
3: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
7: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
0: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: Welcome to your chill zone. Musty Music Cafe. Only music, only musty.
1: So, मजार-ए-शरीफ में दो महीने बाद एक निकाह हो रहा है. उनके निकाह में एक ऐसा आदमी आ रहा है

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट.

0: मानती
1: तू भी बताओ। और ये क्या है? मैं गुब्बारा खा गया, ये फुटबॉल निकल गया, कुछ तो बढ़ रहा है अंदर।
2: न करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे
3: योर पासपोर्ट टू द वर्ल्ड एवरी मंडे मॉर्निंग फ्रॉम ग्लोबल हेडलाइंस टू अ पिंच ऑफ बॉलीवुड स्पाइस। The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check it out. Josh Mehra.
6: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें। समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। योर डोज ऑफ 90s नॉस्टैल्जिया, मस्ती 90s मिक्सटेप विद आपकी 90s वाली अंतरा, थर्सडेज 11 AM ऑनवर्ड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।

0: की याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
4: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे कैफे।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On मस्ती मीडिया नेटवर्क, we're opening a safe space. Dear मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हेलो हाय वेलकम नमस्ते, रेडियो मस्ती 24/7 पर शुरू हो चुका है डियर मस्ती दिल से। मैं हूं आपकी अंतरा, यहां पर आपके साथ बिल्कुल जुड़ते हुए। एंड यस, मस्ती मीडिया 24/7। अगर आप ऐप स्टोर में जाकर हमारा देखेंगे तो नाम बदल कर कुछ ऐसा हो गया है, एंड रेडियो मस्ती 24/7 ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इट। चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, सुना होगा आपने। सो वेल, गोइंग विद दैट, अब आप बताइए कि आप आज कैसे हैं। नहीं नहीं, वो आई एम गुड, ऑल गुड ऑल गुड, ये वाला आंसर नहीं चाहिए मुझे। एक्चुअली कैसे हैं? थोड़े टायर्ड, किसी बात से इरिटेटेड, किसी को मिस कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा हुआ है, या किसी को कुछ बहुत अच्छी चीज बताने का मन कर रहा है, या सब कुछ टेक्निकली ठीक है फिर भी पता नहीं क्यों दिल में थोड़ा सा मैं ऐसा वाला फीलिंग है। यू नो, हम दिन भर में पता नहीं कितनी बार ये पूछते हैं हाउ आर यू, और ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली जवाब भी मिलता है गुड, एंड यू गुड, ऑल गुड, बस वहां पर कॉन्वर्सेशन ओवर। कभी कभी मुझे लगता है दुनिया में हाउ आर यू पूछने वाले तो बहुत हैं, लेकिन आंसर एक्चुअली सुनने वाले थोड़े कम, एंड दैट इज वेयर वी कम इन। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू योर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। आप सुन रहे हो, मैं हूँ आपकी अंतरा, एंड धीरे धीरे करके यहाँ पर हमारी नुपुर रेणुका एंड हमारे साथ हमारे संघर्ष साथी श्रीधर भी जुड़ते हुए जाएंगे। और अगले 3 घंटे के लिए अगर आपके पास किसी हाउ आर यू का ऑनेस्ट आंसर है ना, तो हम सुनेंगे। यहाँ आपको परफेक्टली एक्सप्लेन करना भी जरूरी नहीं है कि आप कंफ्यूज है, कोई नहीं, लिख दीजिए हमें। किसी से गुस्सा है और पता नहीं गुस्सा जस्टिफाइड है या नहीं, वो भी हमें लिख दीजिए। कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, किसी रिलेशनशिप का इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है, या बस मन में एक सवाल है, एम आई द ओनली वन हु फील्स लाइक दिस। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम पहले गूगल से और अब ChatGPT से पूछते हैं, बट हम कह रहे हैं आप हमसे भी पूछ सकते हैं, हम सुनेंगे। सेंड इट टू अस, राइट टू अस, बिकॉज यहाँ नाम इम्पोर्टेंट नहीं है। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कौन है, वो भी जरूरी नहीं है। आप हमारे लिए बस डियर लिसनर, और हम आपके लिए डियर मस्ती। रियल पीपल, रियल सिचुएशंस एंड कॉन्वर्सेशंस जो होपफुली चीजों को थोड़ा सा और क्लियर बना दें। यप, 9151-8963 पर आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए वो ऑटोमेटिक आई एम गुड साइड में थोड़ा सा रख देते हैं। एक बार फिर से पूछती हूँ, हाउ आर यू रियली, थिंक अबाउट इट। और जब तक आप सोच रहे हैं, हम खोलते हैं आज की हमारी पहली चिट्ठी, बट आफ्टर दिस शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक ऑन रेडियो मस्ती 24/7।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऑप्शन ए चुने या ऑप्शन बी चुने, देखो चूज करना आपके हाथों में है और चूज करने के बाद उसको बार बार चूज करना भी आपके हाथों में है। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड द पॉइंट इज कई बार ना मुझे बातें करते करते आपके सवालों में आपके जवाब मिल जाते हैं। यू वोंट बिलीव, अभी मेरे हाथों में जिनका लेटर है उन्होंने पता है मुझे क्या लिख कर भेजा है कि नुपुर मेरे पास दो सिचुएशंस अगर हैं कि एक पहला रास्ता जो कि गलत है और उसे चूज करके मैं अगर खुश रह सकती हूँ तो मुझे वो चूज करना चाहिए, या फिर दूसरा रास्ता जो कि सही है और उसे चूज करके मैं दुखी रह सकती हूँ, मुझे वो चूज करना चाहिए। मैंने अपने मन में तो डिसीजन बना लिया है, फिर भी तुम मुझे बताओ। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है मैं उनको बोलूंगी आप अपना ये लेटर के जो शब्द है ना वो दोबारा पढ़िए। सही और गलत का मतलब आपको पता है, इन दोनों का डिफरेंस आप जानते हो, एंड दिल पर हाथ रखकर बताइएगा। हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी हमें ये नहीं सिखाया कि तुम गलत रास्ता ऑप्ट करो, नो मैटर व्हाट, आगे जाके खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है, व्हाट एवर द पॉइंट इज, है ना। सो मैं कह रही हूँ आगे का फिल्टर रहने दो, खुश रहोगे, बुरा लगेगा, क्या होगा, सही या गलत में क्या चूज करना चाहिए, दैट इज सही, वो अगर आप ऑप्ट कर लोगे ना सो बाय द टाइम चीजें सॉर्ट हो जाएंगी, मन में रिग्रेट नहीं रहेगी। और अगर आपके मन में रिग्रेट जैसी सिचुएशन आ रही है ना तभी आपने मुझसे ये सवाल पूछा है, तभी ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। डेफिनेटली ऐसे ही सवाल और जवाबों का सिलसिला लगातार है।

बिल्कुल ऐसे ही खूबसूरत गाने डियर मस्ती दिल से शो पर मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
2: भाई की डन है मम्मा।
3: ड्यूटी
4: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
3: मैं उठता था।
1: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप, अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति

0: Oh, I hate making love songs.
1: Dear Masti, Dil Se, because sometimes radio par baitha ek anjana insaan aapko duniya se zyada samajh leta hai.
2: वेलकम बैक टू डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7. मैं हूं आपकी आंत्रा, यहां पर आपके साथ वापस से जुड़ चुकी हूं और चलिए साथ में हमारी अगली चिट्ठी को पढ़ते हैं. इन्होंने लिखा है, डियर मस्ती, मैं अपनी मामा को बहुत कुछ बताती हूँ, इनफैक्ट सब कुछ, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बात मैं उन्हें बताती हूँ समहाउ इवेंचुअली पूरे खानदान को पता चल जाती है, और जब मैं उनसे कहती हूँ, कंप्लेन करती हूँ, तो मम्मी का स्टैंडर्ड आंसर होता है कि अरे अपने ही तो है ना बेटा. अब मैंने उन्हें काफी सारा कुछ बताना कम कर दिया है और मम्मी को लगता है कि मैं उनसे दूर हो रही हूँ. How do I explain to her that wanting privacy doesn't mean I love her any less?

पहले जो है बहुत पहले की बात है, एंड मैं सीधा लड़ जाती थी उनसे, एंड बहुत हम दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी एंड आर्ग्यूमेंट्स होती थी, बिकॉज जब पता चलता था एंड इट वॉज लाइक कि ऐसा हो गया, आपने ऐसा क्यों किया, आपको तो ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, शी हैड हर ओन कम बैक्स एंड एवरीथिंग, एंड समहाउ नाउ व्हेन वी मीट एंड वी हैव अ वेरी डिफरेंट इक्वेशन ऑल टुगेदर, एंड कामली मैं उनको बताती हूँ, पता है उस टाइम पे आपने ऐसा किया था और कभी कभी आप ऐसी चीज़ें कर देते थे ना, तो मुझे तो बड़ा ही ऐसा लगता था वैसा लगता था, एंड हर लिसनिंग कैपेसिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम थिंग हैज़ चेंज्ड. सो ऑल्सो टाइम चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग, एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट जब आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, नेवर हैव एनी, जस्ट नॉट इन दिस रिलेशनशिप, नेवर एवर हैव एनी काइंड ऑफ डिस्कशन एंड आर्ग्यूमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. किसी डिसीजन पे जब आपका दिमाग बहुत ज़्यादा जो है हीटेड अप हो रखा हो, कभी मत पहुँचे, बिकॉज दैट इज नॉट वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट. इट इज वेन यू काम योर सेल्फ डाउन एंड देन हैव अ क्लियर कॉन्वर्सेशन, दैट इज वेन यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस. So, well, maybe you can, you know, just have a clearer conversation, a calm one, ki aapne phir bhi apni koi baat kahi, and tell her, mama, agar main specifically bolu isi baat pe that this stays between us, iska matlab hai literally between us, and iske baad bhi agar if she says that apne hi to hai, so aap pyar se kaho ki haan apne hai but meri baat hai, to kisko pata chalega ye choose karne ka haq bhi mera hi hona chahiye, hai na. So isse kya hoga ki bahut zyada kuch complicated nahi hai, simple language mein aapne unko bada क्लियरली समझा दिया, राइट. एंड जो इंफॉर्मेशन कभी कभी ये भी कर सकते हो कि जेन्युइनली आप प्राइवेट रखना चाहती हैं, वो तब तक शेयर ना करें जब तक आपको ट्रस्ट ना हो कि इट इज गोइंग टू स्टे देयर, बिकॉज बाउंड्रीज का एक पार्ट दूसरे इंसान को बताना है कि हमें क्या चाहिए, और दूसरा पार्ट खुद डिसाइड करना कि अगर वो नहीं हो रहा है तो वॉट आई कैन डू डिफरेंटली, है ना. एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम की इस बात का गिल्ट भी, आई डोंट वॉन्ट यू टू कैरी कि मैं मम्मी से सब शेयर नहीं करती, मतलब हम क्लोज नहीं हैं. वी कैन लव समबडी डीपली एंड स्टिल नॉट गिव एक्सेस टू एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. प्राइवेसी इज नॉट सीक्रेसी, एंड प्राइवेसी इज डेफिनेटली नॉट रिजेक्शन. सो असेस द सिचुएशन एंड टेक अ वॉइस कॉल. आई रियली होप दिस हेल्प्स. ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, रिलेशनशिप्स ऐसे ही मच्योर होते हैं. माय डियर लिसनर, दिस इज डियर मस्ती, दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7.

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: हाय, कैसे हैं आप? सब बढ़िया? ये जवाब मन में भी चल रहा हो ना, तभी अच्छा है। बाहर से तो दिखावा हर कोई कर लेता है। डियर मस्ती दिल से शो, मेरे यानी आरजे रुपर के साथ हैं आप। एंड ऑफकोर्स आपका जो लेटर है वो मुझे कई बार ना सवालों के बीच खड़ा कर देता है। ऐसे सवाल जो शायद मुझे भी खुद से पूछने चाहिए। हाँ फिलहाल अभी जो मेरे हाथों में लेटर है उसमें लिखा हुआ है, डियर मस्ती दिल से, मैं ना सोशली अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हूँ और मेरी जो हॉबीज हैं वो कुछ ऐसी हैं कि मैं बस घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे वीडियो गेम खेलता रहता हूँ, वेब सीरीज देखता रहता हूँ, WFH करता रहता हूँ एंड शायद 3 से 4 दिनों में एक बार ही घर से बाहर निकलता हूँ। सो मेरी लाइफ यहीं तक रह गई है। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ या नहीं। मतलब सोशली अंडर कॉन्फिडेंट होने का मतलब और क्या हो सकता है? ठीक है, आपका एक पर्सनल नेचर है, आपको उसे बदलना भी नहीं है, पर आप उसको कहाँ दे रहे हो यार? वेब सीरीज देख रहे हो, वीडियो गेम्स खेल रहे हो, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा रहे हो, मतलब कुल मिलाकर आप ना अपने आप को अपस्किल भी नहीं कर रहे हो। मैंने कभी भी शो पर नहीं बोला है कि आप अगर अंडर कॉन्फिडेंट हो, सोशल टाइप पर्सन नहीं हो, चार दीवारी के अंदर रहने वाले शख्स हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी लाइफ नहीं हो सकती है। हाँ, सो आप अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा ग्रो करो, है ना, लर्न समथिंग, है ना, और दुनिया के बारे में जानो, इंटरेस्ट जगाओ और उसके हिसाब से अपना नेक्स्ट स्टेप लो, ताकि आपको पता चले कि दुनिया कितनी बड़ी है और आपका जन्म सिर्फ एक ही 2BHK फ्लैट या ड्यूप्लेक्स में रहने के लिए नहीं हुआ है। गॉट इट? डियर मस्ती दिल से।
2: जिस तरह तेरी पलके मेरी पलकों से मिला दे।
1: बिल्कुल ऐसे खूबसूरत गाने चलते रहेंगे मेरी जान, मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ। डोंट गो एनीवेयर।

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: मस्ती दिल से आप सुन रहे हैं ऑन रेडियो मस्ती 24/7। यस, ये वही ऐप है जिसका नाम अब मस्ती मीडिया 24/7 हो चुका है। इफ यू गो टू द प्ले स्टोर एंड चेक इट आउट। वेल, मैं हूँ आपकी आंत्रा यहाँ पर, एंड चलिए अगली चिट्ठी की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। डियर मस्ती, रिसेंटली मेरे फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया और मुझे नहीं बुलाया। There could be perfectly innocent reason behind it, I know that. But social media पर उनकी pictures देखी तो honestly बुरा लगा। अब वो सब मेरे साथ बिल्कुल normally behave कर रहे हैं और मैं भी normal हूँ। But somewhere it is still bothering me. Should I discuss it? या छोटी छोटी बातों को discuss करके हम friendships को unnecessarily complicated बना देते हैं। Wow. This is something to think about actually. So my dear listener, नहीं, मुझे नहीं लगता every single hurt needs a meeting or an explanation या फिर एक closure. कभी friend ने message का tone थोड़ा weird रखा, कभी किसी ने call back नहीं किया, कभी plan बना और आपको नहीं पूछा, हर चीज पर we need to talk करेंगे तो friendship HR department type feel होने लगेगी। But इसका ऑपोजिट भी हेल्दी नहीं है कि हर बार छोड़ो यार क्या ही बोलना कहकर वो बात अपने अंदर रखना। तो सवाल ये उठता है कि डिसाइड कैसे करें, राइट? सो मैं ऐसे सिचुएशन में आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं जेन्युइनली इसे लेट गो कर सकती हूँ? दैट्स व्हाट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, नॉट प्रिटेंड टू लेट गो, ओके? एक्चुअली लेट गो। कल वही फ्रेंड्स मिलेंगे तो क्या मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगी या अंदर से आई विल बी अ लिटिल कोल्ड? क्या नेक्स्ट प्लान में जाकर भी मेरा माइंड यही इसी बात पे चलेगा कि हाँ हाँ पिछली बार तो तुमने मुझे बुलाया ही नहीं था, जस्ट लाइक दैट? क्या मैं उनके किसी कंप्लीटली अनरिलेटेड बात को भी उसी हर्ट के लेंस से देखने लगूंगी? अगर आंसर है नो, इट जेन्युइनली देन डजंट मैटर एनी मोर, then just leave it and let it go. Every emotion needs acknowledgement, but every emotion doesn't necessarily need confrontation. लेकिन अगर आप notice कर रहे हैं कि हर बात पर बार बार दिमाग में आ रहा है, then my dear listener, maybe it was not that small for you. और तब I think पूछ लेना complication नहीं है, but पूछने का तरीका difference create करेगा। तुम लोगों ने मुझे क्यों exclude किया? इससे सामने वाला ना क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन से डिफेंसिव बड़े हो जाते हैं, एंड यू नो ऐसा कुछ कह सकते हैं कि यार आई सॉ योर पिक्चर्स द अदर डे, आई नो देयर कुड बी एब्सोल्युटली नथिंग टू इट, बट मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे थोड़ा सा तो लेफ्ट आउट फील हुआ, फोमो फील हुआ मुझे, सो आई थॉट रादर देन मेकिंग स्टोरीज इन माय हेड आई विल जस्ट आस्क। बस क्यूरियोसिटी बिफोर एक्यूजेशन। हो सकता है जेन्युइनली इनोसेंट एक्सप्लेनेशन हो कि लास्ट मिनट प्लान था, लिमिटेड सीट्स थी, किसी और ने ऑर्गेनाइज किया था, या मे बी हाँ इंटेंशनली नहीं बुलाया था, एंड दैट मे हर्ट, बट एटलीस्ट अब आप रियलिटी से डील कर रहे हैं, अजम्पशन से नहीं। एक चीज और, एक इंसिडेंट एंड एक पैटर्न में डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एक बार हुआ, ओके, ऑब्जर्व, बार बार आप ही लेफ्ट आउट हो रहे हैं, देन मे बी कॉन्वर्सेशन सिर्फ उस एक डिनर के बारे में नहीं है, मे बी फ्रेंडशिप का इक्वेशन चेंज हो रहा है और उसे ऑनेस्टली देखना जरूरी है। सो माय डियर लिसनर, अच्छी फ्रेंडशिप्स वो नहीं होती जहां कभी हर्ट ही ना हो, दैट्स इम्पॉसिबल। अच्छी फ्रेंडशिप शायद वो होती है जहां आपको इतनी सेफ्टी हो कि जरूरत पड़ने पर आप ये कह सको कि यार वो बात तुम्हारी मुझे थोड़ी सी बुरी लगी। But well, I really, really hope this helps. Because sometimes one honest 5 minutes ka conversation saves you from 5 weeks of overthinking. Yeh hai Diya Masti, dil se on Radio Masti 24/7.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी कौन है मम्मा?
2: जूटी।
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं, पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन, इस नोकझोंक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करें ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ, वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट जो।

0: डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: ऐसा होता है, डेफिनेटली ऐसा होता है। आप जिस रंग के सनग्लासेस पहनते हैं ना, पूरी दुनिया उसी रंग की दिखाई देती है मेरे बॉस। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। और अभी जिन्होंने मुझे लेटर भेजा है ना, उन्होंने शायद सैड, मायूसी, परेशान, हार्ट ब्रेकिंग, नेगेटिविटी का चश्मा पहना हुआ है। डेफिनेटली इसमें लिखा हुआ है डियर मस्ती दिल से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं वो अपनी रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा सैड है। तो मैं अब अपनी टीनेज ग्रुप में आ गई हूँ और मैं अपनी लाइफ का पहला रिलेशनशिप भी बनाने से पहले 100 बार सोच रही हूँ। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए बनी नहीं है। जिन्होंने मुझे ये लेटर भेजा है उनसे मैं पूछना चाहूँगी, रियली यार? देखो, ये बातें समझने के लिए आपकी एज थोड़ी छोटी है, बट स्टिल अगर आप इन चीज़ों को लेकर सैड फील कर रही हो ना कि आपके आसपास रिलेशनशिप में सब बुरे चल रहा है, सब कुछ खराब है, तो आप ना अपने करियर को लेकर भी सैड फील करोगे, आप अपने लाइफस्टाइल को लेकर भी खराब फील करोगे, आप दोस्तों के साथ जो रिश्ता रखोगे ना उसमें भी सैड फील करोगे। तो जो एक जगह सिचुएशन आती है ना वो वाइसी वर्सा सब जगह रिफ्लेक्ट करने लगती है। सबसे पहले थोड़ा पॉजिटिव सोचो यार, अपने मम्मी पापा को देखो यार, सब कुछ ठीक चल रहा है ना, राइट? सो डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ो और जैसा सोचोगे वैसा हो जाए।
2: पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है।
1: बिल्कुल, होते होते प्यारे प्यारे गाने डियर मस्ती दिल से शो पर चल रहे हैं मेरे यानी आरजे नुपुर के साथ।

आप सुन रहे हैं डियर मस्ती दिल से ऑन रेडियो मस्ती 24/7। मैं हूं आपकी अंतरा। और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि कोई इंसान बदल गया है ना, कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि उसका रोल बदल गया है और हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये नए रोल में पुराने रिलेशनशिप को कहाँ पे रखें। मुझे ये थॉट इसलिए आया बिकॉज हमारी अगली चिट्ठी जो है कुछ इसी से रिलेटेड है। डियर मस्ती, वो कहते हैं कि मेरी कलीग और मैं काफी अच्छे फ्रेंड्स थे, ऑफिस में साथ लंच कॉफी गॉसिप एवरीथिंग वी डिड टुगेदर। रिसेंटली शी गॉट प्रमोटेड, नाउ शी इज माय मैनेजर। सिंस देन शी हैज बिकम वेरी फॉर्मल विद मी एट वर्क। कॉन्वर्सेशंस मोस्टली काम तक लिमिटेड है एंड वो पहले वाली वॉर्म्थ मुझे फील नहीं होती। आई अंडरस्टैंड दैट शी नीड्स टू बी प्रोफेशनल बट समवेयर आई कांट हेल्प फीलिंग दैट शी हैज चेंज्ड। एम आई बीइंग अनफेयर? So, my dear listener, unfair, maybe थोड़ा सा, wrong, maybe not, because आप जो miss कर रहे हैं वो designation नहीं है, आप अपनी friend को miss कर रहे हैं, and that's understandable, लेकिन एक बार situation को उनकी chair पे बैठकर भी देखते हैं, right? कल तक she was your colleague, आज suddenly she has to manage you, maybe review your work, correct you, make decisions affecting you, maybe कभी आपको नो भी उनको कहना पड़े, डांटना पड़ जाए, एंड साइमल्टेनियसली उन्हें ऑफिस के दूसरे लोगों को भी ये कॉन्फिडेंस देना है कि बिकॉज यू टू आर फ्रेंड्स यू आर नॉट गेटिंग प्रेफरेंशियल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। दैट्स एक्चुअली क्वाइट अ ट्रिकी पोजिशन। हो सकता है जो आपको शी हैज चेंज टाइप फीलिंग लग रही है वो उनकी तरफ से आई नीड टू बी वेरी केयरफुल वाली फीलिंग हो। समटाइम्स प्रोफेशनलिज्म लुक्स लाइक अ डिस्टेंस फ्रॉम द अदर साइड, तो मैं immediately friendship को judge करने को तो नहीं कहूंगी। Workplace के बाहर देखिए, क्या वो अब भी message करती हैं? क्या वो अब भी आपसे coffee के लिए मिलती हैं? क्या personal conversations अब भी हैं? अगर yes, then perhaps friendship गई नहीं है, बस office में उसकी boundaries change हो गई है। And actually that might be healthier for the both of you, trust me on that. Because imagine the opposite situation. अगर वो office में भी आपके साथ exactly पहले जैसे behave करे, extra friendly हो, हर वक्त आपके साथ हो, कल कोई और colleague आकर ये कह सकता है कि of course, ये भाई इसको तो preference मिलेगी ही, दोस्त जो ठहरे, है ना? और फिर problem आप दोनों के लिए create होगी। But having said that, अगर आपको लगता है कि distance सिर्फ workplace तक limited नहीं है, she has completely withdrawn personally too, and it's genuinely bothering you, then talk. But again, tone matters, right? Promotion के बाद तुम तो बदल गई हो। No. Because that sounds like judgment. Maybe I completely understand that our work dynamic जो है, it has changed, and I respect that. बस कभी कभी मुझे हमारी friendship miss होती है, so I wanted to just quickly check that. You're okay, right? That's it. Give her some room to tell you what she is navigating to. हो सकता है, my dear listener, वो भी घर जाकर किसी को ये कह रही हो कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी फ्रेंड को, अपनी दोस्ती को मैनेज कैसे करूं विदाउट मेकिंग थिंग्स ऑकवर्ड। हम अक्सर ना अपनी साइड का डिस्कम्फर्ट इतना क्लियरली फील करते हैं कि सामने वाला का डिस्कम्फर्ट हमें दिखाई नहीं देता। एंड प्लीज फ्रेंडशिप प्रूव करने के लिए उनसे वर्क प्लेस एक्सपेक्टेशंस मत कीजिए। एक्चुअली अगर वो आपकी अच्छी फ्रेंड है, मेक हर न्यू जॉब इजियर, मे बी नॉट हार्डर। वर्क में लेट हर बी योर मैनेजर, आउटसाइड वर्क गिव द फ्रेंडशिप अ चांस टू फाइंड अपना एक नया रिदम। आई होप रियली दिस हेल्प्स। बिफोर डिसाइडिंग दैट शी हैज चेंज्ड, गिव बोथ ऑफ यू अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट टू व्हाट चेंज्ड अराउंड यू। यह जिया मस्ती दिल से सुनते रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड।

डियर मस्ती दिल से, बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।

0: था एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है।
1: दुनिया में कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता। पहली बात, हमने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया हुआ है, हमने एक अपना स्केलिंग प्रोफार्मा बनाया हुआ है, उस पर अगर कोई खरा उतरता है तो वो सही है वरना गलत है। तो मैं किसी को पर्सनली टिप्पणी नहीं दे रही हूँ। डियर मस्ती दिल से शो पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ, एंड अभी मेरे हाथों में जो लेटर है उसमें लिखा हुआ है, हेलो डियर मस्ती। मैं पूछना चाहूंगी कि किसी भी शख्स में रेड फ्लैग क्या होता है? तो सबसे पहली बात, ये जो रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग है ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है, पर हाँ पहले भी हम अच्छा या बुरा इंसान ढूंढते थे ना, तो अच्छा मींस अब एक कैटेगरी कर दी गई है ग्रीन फ्लैग की, बुरा इंसान मतलब रेड फ्लैग। तो इन टर्म्स पे ना जाते हुए मेरे सिंपल तीन रूल्स हैं जिनका आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब इन एनीथिंग। ओके, सो नंबर वन इज कि आपका वो चाहे दोस्त हो या पार्टनर हो, वो चाहे दुश्मन हो, आपका कलीग हो, आपका कह सकते हैं कुछ भी हो यार, नेबर हो यार, बस वो झूठ ना बोलता हो, ठीक है। जो झूठ नहीं बोलता है ना वो शख्स सबसे ज्यादा दिल का साफ होता है, बहुत बड़ा फिल्टर है, राइट। एंड नंबर टू इज कि जब आप सामने वाले से कुछ डिस्कस करने बैठे तो वो उस टॉपिक को बार बार पोस्टपोन ना कर रहा हो, मतलब एटलीस्ट मैन टू मैन कॉन्वर्सेशन चल रही हो, राइट। नंबर थ्री, आपका सुख जो है मतलब आपका जो ग्लोरिफिकेशन है ना वो तो सामने वाला शख्स समझ लेता है कि हाँ सब अच्छा अच्छा चल रहा है, अच्छा अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही आपका एक लो फेज आए उसमें वो आपका साथ ना दे तो बस तभी टाटा बाय बाय सी यू कर लीजिए उससे, आप लाइफ में उतने ज्यादा खुश रहोगे।

आज तो पता ही नहीं चला कि डियर मस्ती दिल से पर हम फिर उस पॉइंट पर आकर खड़े हो गए हैं जहां पर कहना पड़ता है इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप अनदर एपिसोड। रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे थे डियर मस्ती दिल से। आज के लेटर्स के बारे में सोच रही थी और नूपुर को सुना, रेणुका को सुना, देन हमारे संघर्ष साथी श्रीधर को भी सुना। कभी भी आपको कोई बात बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगे, फील फ्री टू जस्ट राइट टू अस 9151896 पर। और मैं ये भी सोच रही थी कि लाइफ की मैक्सिमम सिचुएशंस ब्लैक एंड व्हाइट होती ही नहीं है, नेवर, राइट? एक तरफ आपको लगता है कि मम्मी को सब बता सकते हैं बिकॉज शी इज योर सेफ स्पेस, दूसरी तरफ आपको अपनी प्राइवेसी भी चाहिए होती है। फ्रेंड्स ने एक प्लान आपके बिना बना लिया, हो सकता है कोई इनोसेंट रीजन हो, बट फिर भी कोई तो हर्ट हुआ ना, एंड आई थिंक दैट्स लाइफ। कभी कभी दो चीजें एक साथ ट्रू हो सकती हैं। आप किसी से बहुत प्यार कर सकते हैं एंड स्टिल नीड अ बाउंड्री विद देम। आप किसी की इंटेंशन समझ सकते हैं एंड स्टिल एक्नॉलेज दैट देयर एक्शन हैज काइंड ऑफ हर्ट यू। शायद इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब हर सिचुएशन का परफेक्ट आंसर ढूंढना नहीं है। मे बी इट्स लर्निंग टू से दैट आई अंडरस्टैंड योर साइड बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड माइन। और मुझे लगता है कि हम अक्सर यही सेकंड पार्ट भूल जाते हैं, दूसरों को समझते समझते खुद को डिसमिस कर देते हैं या फिर खुद के हर्ट में इतने उलझ जाते हैं कि सामने वाले का पर्सपेक्टिव देखना भूल जाते हैं। बैलेंस शायद बीच में कहीं तो है। फील व्हाट यू फील, आस्क व्हाट यू नीड टू आस्क, से व्हाट नीड्स टू बी सेड, एंड व्हेरेवर पॉसिबल लीव अ लिटिल रूम फॉर अनदर पर्सपेक्टिव। That's what we try to do in every week is show dear masti dil se par। आप अपने लेटर भेजते हैं, हम उसे जज करने के लिए नहीं, थोड़ा सा अनपैक करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं। कभी कभी हमारी बात आपको सही लगेगी, कभी आप कहेंगे कि नहीं ये मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता या करती, एंड दैट्स ओके टू बिकॉज दिस शो इज नॉट अबाउट टेलिंग यू हाउ टू लिव योर लाइफ, इट्स जस्ट अबाउट कॉन्वर्सेशंस दैट होपफुली मेक यू स्टॉप फॉर अ सेकंड एंड थिंक ओके मे बी देर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस। वेल, इसी के साथ जाते जाते बस इतना कहूंगी, हर बात को सॉल्व करना जरूरी नहीं, हर रिश्ता परफेक्ट होना जरूरी नहीं और हर फीलिंग को जस्टिफाई करना भी जरूरी नहीं। कभी कभी बस उसे समझ लेना और फिर थोड़ा सा लाइटर होके आगे बढ़ जाना, दैट इज इनफ टू। मैं अंतरा एंड ऑन बिहाफ ऑफ नूपुर एंड रेणुका, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग अस विद योर स्टोरीज एंड स्पेंडिंग दीज 3 आवर्स विद अस। फिर मिलेंगे अगले डियर मस्ती दिल से के एक नए एपिसोड में। टिल देन बी काइंड टू द पीपल बट अपने लिए थोड़ी काइंडनेस जरूर बचाकर रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। रंग रेजा, रंग रेजा।

I would like to thank Mirchi Awards for giving me this opportunity. हर कंपोजर का एक ड्रीम होता है, मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं अपने देश के साउंड्स को लेके कुछ करूं, और मुझे आज इस प्लेटफॉर्म पे ये मौका मिला कि मैं अपने देश के म्यूज़िक को एक साथ इकट्ठे बाइंड करके एक स्टेज पे लाऊं. एंड इट वुडन्ट हैव बीन पॉसिबल विदाउट दिस अमेजिंग आर्टिस्ट्स ऑन स्टेज, एंड दिस इज साउंड ऑफ आवर नेशन. And this is what makes me love my zindagi. So on that note, let me be.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वार्म हेलो एंड वेलकम सिंगापुर। मैं हूं आपका दोस्त समर और स्वागत करता हूं आप सभी का इस शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। और ये आप सुन रहे हैं सिंगापुर के एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो नाउ ऑन द गो, दैट इज रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए। सिंगापुर, आज हम जिस फनकार की बात करने जा रहे हैं वो टैलेंट का एक पैकेज है जिसे आप जिस भी तरीके से यूज करना चाहे कर सकते हैं। भाई मान लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके लिए एक फिल्म डायरेक्ट कर दें तो वो बेहद ही कमाल की फिल्म बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि फिल्म का म्यूजिक भी वही दे दें तो जबरदस्त म्यूजिक वो दे देंगे आपको। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिल्म वो लिख भी दें, बड़ी खूबसूरत फिल्म लिख कर देंगे आपको। ये ऐसे फनकार हैं, ये ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम मिसाल के तौर पर लिया जाता है, जैसे कि उनके जैसा काम चाहिए क्या, या उनकी जैसी फिल्में चाहिए, या उनका जैसा म्यूजिक चाहिए क्या। तो ये जो उनके जैसे टाइप वाले कलाकारों में से हैं, उनका नाम है, जो बहुत ही विशाल प्रतिभा के धनी है, वो है विशाल भारत।

तो लेजेंड्स में आज हम इन्हीं के बारे में बातें करेंगे, इन्हीं की फिल्मों के गाने सुनेंगे। तो पहले गाने सुनिए और फिर हम बात करेंगे कि कैसे एक अंडर 19 लेवल तक क्रिकेट खेलने वाला लड़का म्यूजिक कंपोजर बन गया। सुनते रहिए रेडियो मिर्ची 24/7 लाइव पर लेजेंड्स। फिर से आज विशाल भारद्वाज की कहानी समर की जुबानी।

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइकी डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
1: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
5: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
6: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव और मैं हूं यहां पर समर, लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं लेजेंड्स फिर से। आज हम विशाल भारद्वाज की बात कर रहे हैं। 4 अगस्त 1965 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर के पास चांदीपुर नाम के गांव में इनका जन्म हुआ। माँ सत्या भारद्वाज हाउसवाइफ थी और पिताजी श्री राम भारद्वाज शुगर केन इंस्पेक्टर थे। हालांकि वो पोएट्री भी करते थे और बहुत सारी छोटी छोटी फिल्मों में उन्होंने गाने भी लिखे हैं। विशाल जब 5वीं क्लास में थे तब तक इनका परिवार नजीमाबाद में रहा। इसके बाद ये सब मेरठ आ गए। मेरठ में विशाल को क्रिकेट का शौक चढ़ गया, जैसे कि हर हिंदुस्तानी को होता है, मतलब इस उम्र में होता ही है, या तो क्रिकेट स्टार बन जाओ या फिल्म स्टार बन जाओ, यही तो सपना देखकर हम बड़े होते थे। हालांकि उन्होंने अंडर 19 तक क्रिकेट खेला, लेकिन एक मैच में बॉल सीधे इनके अंगूठे पर आ लगी और फिर वो बाद में कभी क्रिकेट नहीं खेल पाए। तो साहब यहाँ इनका अंगूठा नहीं टूटा बल्कि दिल ही टूट गया। लेकिन विशाल के दिल के किसी कोने में एक म्यूजिशियन भी छुपा हुआ था। सिर्फ 17 साल की उम्र में इन्होंने एक धुन बनाई और उसे अपने पिताजी को सुनाया। पिताजी को धुन बड़ी अच्छी लगी। पिताजी ने वो म्यूजिक डायरेक्टर उषा खन्ना को सुना दी। पिताजी उषा खन्ना जी के लिए कई गाने लिख चुके थे तो उषा खन्ना जी को वो जानते थे। उन्होंने वो धुन उषा जी को सुना दी कि भाई देखिए ये मेरे बेटे ने बनाई है, और साथ में ये भी कह दिया कि देखो हम तो ये कंपोजिंग का काम करते नहीं है, तुम्हें अगर कहीं लगे कि ये गाना ये धुन यूज हो सकती है तो तुम यूज कर लेना। और मैं आपको बताऊं कि 1985 में एक फिल्म आई थी यार कसम, उषा खन्ना का म्यूजिक था इसमें और उन्होंने इस धुन को वहां पर यूज भी किया। यानी आप ये कह सकते हैं कि विशाल के करियर की शुरुआत तो यहीं से हो गई थी। लेकिन जो असली शुरुआत थी मेरे दोस्त, उसमें अभी वक्त बचा था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन विशाल भारद्वाज के इन गानों का लुत्फ उठाने के बाद आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो, नाउ ऑन द गो।

0: Aamir Khan wondered.
1: Wow, look, I could have thought of anything. That's amazing.
0: Salman Khan wanted answers.
2: कैसे किया ये?
0: R. Madhavan said.
3: Awesome.
2: You're very good, yaar. Very well done.
0: And Boman Irani?
4: I say this with great respect. This is actually it's blown my mind.
0: सभी का एक ही सवाल, कैसे कर लेती है सुहानी शाह ये कमाल?
5: Anybody talks about magic in the country, I want them magic Suhani.
0: Singapore, get ready to be spellbound with Suhani Shah, the first Indian to win at what's known as the Oscars of Magic. Wonder Soul Escapades and Epic Encounters present Spellbound with Suhani Shah, an incredible evening of mind reading, mentalism and impossible experiences. 20th September, 6 p.m. Quetta Ayer People's Theatre, hosted in English. Tickets at Sistic. Come curious, leave spellbound with Suhani Shah.
6: How do you know these things? Stop reading my mind.
7: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
8: स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस बेहतरीन शो में जिसका नाम है लेजेंड्स फिर से। और आज की जो हमारे कलाकार हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अपने शो पर, वो है बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन प्ले राइटर विशाल भारद्वाज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन्होंने एक धुन तो बना दी थी, लेकिन ये हायर स्टडीज भी करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की। और पढ़ते पढ़ते इन्हें एहसास हुआ कि इन्हें प्यार हो गया है, और जिनसे प्यार हुआ वो एक कमाल की सिंगर हैं। अब उनके साथ रहने के लिए क्या किया जाए, तो इन्हें म्यूजिक में रुचि तो थी ही, तो इन्होंने म्यूजिक सीखना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसी कॉलेज में जहां ये पढ़ते थे इनकी मुलाकात हो गई थी रेखा भारद्वाज से, इनका लव इंटरेस्ट। हालांकि वो इनसे सीनियर थी, लेकिन वो इनकी अच्छी दोस्त बन गई, और उसके बाद तो आप जानते हैं कि ये बाद में इनकी लाइफ पार्टनर भी बनी। रेखा भारद्वाज बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। विशाल भारद्वाज की ज्यादातर, या यूं कहूं कि ऑलमोस्ट हर फिल्म में इनका एक गाना तो होता ही है। बहरहाल दिल्ली में इन्होंने थोड़ा स्ट्रगल किया। इनके कुछ दोस्त थे जो गजल गाते थे, तो उनके लिए ये हारमोनियम बजाया करते थे, लेकिन ये मुंबई आना चाहते थे, हर किसी का सपना भैया, ड्रीम सिटी तो वही है। बड़ी मुश्किलों के बाद इन 1990 ये मुंबई आ पाए। 1991 में इन्होंने रेखा जी से शादी कर ली, और अगले बरस यानी 1992 में इनकी किस्मत का सितारा चमका, और इन्होंने वो किया जो आज तक सबको याद है। याद आपको भी है, लेकिन शायद आप भूल रहे हो, मैं आपको याद दिलाता हूँ। ये सुनिए, इस गाने को श्रीमान विशाल भारद्वाज ने ही कंपोज किया था, जो तब भी हिट हुआ था और आज भी हिट है। मतलब सिंगापुर ये म्यूजिक इतना हिट हुआ कि मुंबई में जितने भी म्यूजिक कंपोजर थे या राइटर्स थे, उनको लगा कि विशाल भारद्वाज नाम का कोई इंसान अपने यहाँ मुंबई में रहता है और काम कर रहा है, और काफी अच्छा काम कर रहा है। और इस गाने के कंपोजिशन में एक अच्छी बात ये हुई कि गुलजार साहब से उनकी मुलाकात हो गई, क्योंकि गुलजार साहब अपने गाने रिकॉर्ड कराते वक्त खुद भी मौजूद रहते हैं स्टूडियोज में। तो गुलजार साहब से ये मुलाकात बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली थी, लेकिन कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इन गानों का लुत्फ लीजिए, विशाल भारद्वाज की कहानी सुनते रहिए समर के साथ रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। यह लेजेंड्स फिर से, मिलता हूँ इन गानों के बाद फिर से।

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें, समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 AM onwards only on Radio Mercy 24/7 Live.
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर रेडियो मजी 24/7 लाइव सिंगापुर ओनली हिंदी रेडियो नाउ ऑन द गो पर आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। मेरा नाम है समर और आज हम विशाल भारद्वाज की बात कर रहे हैं। विशाल भारद्वाज कमाल के डायरेक्टर, कमाल के म्यूजिक कंपोजर और कमाल के स्क्रीन प्ले राइटर। सिंगापुर विशाल भारद्वाज की फिल्मों में एक अलग ही बात होती है, उनकी एक अलग स्टाइल है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इनकी ज्यादातर फिल्में ट्विस्टेड और इनकी फिल्मों के कैरेक्टर्स ग्रे शेड्स में होते हैं और म्यूजिक भी इन्हीं का होता है जो सीधा दिल में उतर जाता है। दरअसल ये मुंबई म्यूजिक डायरेक्टर बनने आए थे ताकि रेखा जी के साथ रह सकें, और जब भी इनको फिल्में मिली तो इन्होंने कमाल का म्यूजिक दिया। जैसे कि जंगल बुक का वो टाइटल सॉन्ग था ही जो मैंने अभी आपको सुनाया, और इसके अलावा उसके बाद इन्होंने अभय जो कि एक चिल्ड्रन फिल्म थी अगेन, उसमें म्यूजिक दिया, वो भी हिट रहा। लेकिन जो बड़ी कामयाबी इन्हें मिली वो इनको मिली 1996 में गुलजार साहब के डायरेक्शन में बनी फिल्म माचिस से। इस फिल्म का एक एक गाना कल्ट क्लासिक बन गया, हर किसी की जुबान पर थे इस फिल्म के गाने। गुलजार साहब की बोल और विशाल भारद्वाज का म्यूजिक। विशाल भारद्वाज साहब के लिए गुलजार साहब कहते भी हैं कि आरडी के बाद, पंचम के बाद अगर मेरे लफ्जों का किसी ने सही तरीके से इस्तेमाल किया है या इंसाफ किया उसके साथ तो वो विशाल है। कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, और इतना बड़ा साथ अगर आपको मिल जाए मुंबई में तो फिर और किसी की जरूरत कहां है। और इस फिल्म से गुलजार साहब और विशाल भारद्वाज का जो साथ बना वो आज तक बरकरार है। विशाल भारद्वाज की फिल्मों के गीत गुलजार साहब ही लिखते हैं और खुद विशाल उन गीतों को कंपोज करते हैं। बहरहाल माचिस के बाद इन्होंने कई टीवी सीरियल्स में भी काम किया और फिल्मों में भी। 1999 में फिल्म आई गॉड मदर और इस फिल्म के लिए विशाल को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक कंपोजर मिला। सिंगापुर अभी आपके लिए गाने आएंगे और उसके बाद म्यूजिक कंपोजर से फिल्म डायरेक्टर कैसे बने विशाल ये बताएगा समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, इन गानों को एंजॉय कीजिए, वापस आइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ।

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
4: लेजेंड्स फिर से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं समर, रेडियो मसी 24/7 लाइव पर लेकर विशाल भारद्वाज की विशाल कहानी। जी हाँ, आज हम उन्हीं को जी रहे हैं, उन्हीं की जिंदगी की बातें कर रहे हैं, उनकी फिल्मों के बारे में बातें कर रहे हैं। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बताया कि उनके म्यूजिक को अब लोग पसंद करने लगे थे और उनकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन एक बार गुलजार साहब ने इनसे कहा कि अगर तुम्हें इस इंडस्ट्री में टिकना है और तुम्हें तुम्हारी पसंद का म्यूजिक देना है तो तुम्हें अपनी लाइन चेंज करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ये जो मीडियम है ना, ये डायरेक्टोरियल मीडियम है, तुम पहले राइटिंग सीखो और फिर खुद फिल्में बनाओ, तब तुम अपनी पसंद का म्यूजिक देना उन फिल्मों में। विशाल भारद्वाज गुलजार साहब को वैसे भी अपना मेंटर मानते हैं। वो कहते हैं कि वो गुलजार साहब के बचपन से फैन है और यहाँ तक कि उनके फादर उन्हें चिढ़ाते थे जानबूझकर। मतलब गुलजार साहब की कोई भी शायरी वो पढ़ते और बोलते कि क्या लिखा है यार गुलजार साहब ने, मजा ही नहीं आया, ऐसे कौन लिखता है। और साहब बस फिर क्या, विशाल अपने पापा जी से लड़ लिया करते थे इस बात पर। और सही भी है, सिंगापुर मतलब बचपन से जिनके फैन है और उन्हीं के साथ आपको काम करने का मौका मिल जाए तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है किसी इंसान के लिए। नहीं, बहरहाल इन्हीं मजेदार बातों के साथ अब वक्त हो चला है कुछ गाने सुनने का और उसके बाद इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आप यहीं रहिएगा, सिंगापुर का एकमात्र हिंदी बॉलीवुड रेडियो आप सुन रहे हैं, रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव। मेरा नाम है समर, लौटूंगा यहीं पर।

0: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से, और आप अभी जिस आवाज को सुन रहे हैं उसका नाम है समर। रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर आपसे मुखातिब हूँ विशाल भारद्वाज की बातें लेकर। तो आज विशाल भारद्वाज, गुलजार साहब की बातों से इंस्पायर होकर विशाल ने अपनी पहली फिल्म बनाई, जो देखा जाए तो एक बाल फिल्म थी, चिल्ड्रन फिल्म थी। नाम था उसका मकड़ी।
1: उंगली दबा के अंगूठा बना लूंगी टाउं टाउं।
0: बहुत ही खूबसूरत थी ये फिल्म, एक हॉरर कॉमेडी थी ये, जिसमें श्वेता प्रसाद का डबल रोल है, छोटी सी बच्ची श्वेता प्रसाद, और फिल्म में शबाना आजमी है, एक घोस्ट बनी है वो। बड़ी मजेदार फिल्म है, बड़ी कमाल की फिल्म है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप भी देखेगा, आपको भी अच्छी लगेगी पक्का पक्का। एक बात जो विशाल भारद्वाज बोलते हैं कि हर डायरेक्टर की तरह मेरा भी सपना था कि मैं गॉडफादर टाइप की गैंगस्टर मूवी बनाऊं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, विशाल भारद्वाज को फिल्में बनाने का शौक क्विंटन टेरेंटिनोस की पल्प फिक्शन जो 1994 में आई थी उसको देखकर और क्रेजिस्टॉफ की टेलीविजन सीरीज देखलॉक को देखकर हुआ था। तो ये गैंगस्टर फिल्म बनाना चाह रहे थे और उसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते एक दिन इनके हाथ लग गई विलियम शेक्सपियर की मैकबेथ। उनको कहानी काफी इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने सोचा कि यार ये सही टॉपिक है, और साहब इसी नॉवल पर इन्होंने बना डाली मकबूल, विशाल भारद्वाज की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म।
2: गिलोरी खाया करो गुलफाम, ज़बान काबू में रहती है।
0: ये फिल्म एक क्लासिक बन गई, हर कोई इस फिल्म को पसंद करता है, और इसी फिल्म ने विशाल भारद्वाज को उन डायरेक्टर्स की लिस्ट में ला खड़ा किया जिनके स्टाइल की लोग बात करते हैं। इस फिल्म से दो कलाकारों की लाइफ बिल्कुल बदल गई, एक तो खुद विशाल भारद्वाज की और दूसरे इरफान खान साहब की। विशाल भारद्वाज के डायरेक्शन के बाद इस फिल्म के लिए किसी और की बात की जाती है तो वो है इरफान खान। कमाल का अभिनय उन्होंने किया जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। और पंकज कपूर है इस फिल्म में, वो अपने कैरेक्टर में घुसकर उसके साथ इंसाफ न करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह की कैरेक्टराइजेशन से बनी ये फिल्म मकबूल मकबूल हुई, और मकबूल हो गए डायरेक्टर के तौर पर हमारे आज के लेजेंड विशाल भारद्वाज भी। तो आइए कुछ गाने सुन लेते हैं इन्हीं की फिल्मों के, उसके बाद इस सफर को आगे बढ़ाते हुए आपको ले चलूंगा ये बताने के लिए कि इनकी फिल्मोग्राफी की क्या खास बातें हैं। आप सुनते रहिएगा रेडियो मस्जिद 24/7 लाइव पर समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
3: I said name's Aditya. You can call me Adi.
4: I'm Panna.
3: Hi. Feel like a spin? Upar chalogi?
4: Kahan?
3: Mars. Mars pe chalenge.
4: Is plane mein?
3: Of course. Don't underestimate this fly. It can fly really high. Chalo.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: बाइक की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
2: मैं उठता था।
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट jyoti.com.sg।
4: आप सुन रहे हैं समर के साथ लेजेंड्स फिर से।
5: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से और समर आपके लिए एक बार फिर से हाजिर है लेकर विशाल प्रतिभा के धनी विशाल भारद्वाज की कहानी। सिंगापुर, अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कहीं ना कहीं शेक्सपियर से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड या बहुत इंप्रेस्ड है। इन्होंने अब तक 3 फिल्में तो ऐसी बनाई हैं जो शेक्सपियर के नॉवल पर ही बेस्ड हैं, जैसे मकबूल जो मैकबेथ पर बनी, और इसके बाद इन्होंने बनाई नॉवल ओथेलो पर बेस्ड ओमकारा। अजय देवगन, विवेक ओबेरॉय, सैफ अली खान स्टारर, बहुत ही कमाल की ये फिल्म थी। कैसे नॉर्थ इंडिया में गैंगस्टर रहते हैं उन पर बेस्ड ये फिल्म थी, और ऐसा लगता है आपको कि वाकई आप उनकी गैंग के आसपास रहकर इस फिल्म को देख रहे हैं। फिल्म का एक गाना बीड़ी जलाई ले आहा क्या पॉपुलर हुआ था। और इसके अलावा भी इस फिल्म का म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। जहाँ एक तरफ कई डायरेक्टर्स रोमांटिक फिल्में बना रहे थे, कॉमेडी बना रहे थे, वहीं विशाल भारद्वाज एक अलग ही टेस्ट ऑडियंस को दे रहे थे, एक अलग ही तरह का सिनेमा पेश कर रहे थे और जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे थे। इसके बाद इन्होंने 2014 में शेक्सपियर के नॉवल हेमलेट पर तीसरी फिल्म बनाई हैदर।
6: गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले।
5: ये फिल्म कश्मीरी मुद्दों पर थी और इस फिल्म को विशाल भारद्वाज ने राइटर बांशरुद पीर के साथ मिलकर लिखा, जो खुद कश्मीरी मुद्दों के गवाह थे। यानी उनकी आंखों के सामने ही वो सब घटनाक्रम घटा जो उन्होंने फिल्म में पेश किया।
7: मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। किसलिए? पूछना।
8: किसलिए?
7: अपने भाई के लिए।
8: आप इलेक्शन लड़ने का इंतजार कीजिए चाचा, मेरी लड़ाई तो शुरू हो गई।
5: ये फिल्म भी सुपरहिट रही और शाहिद कपूर जिन्होंने इस फिल्म में काम किया था उनका काम काफी सराहा गया। इसमें इनके अलावा विशाल भारद्वाज की फेवरेट एक्टर इरफान खान ने भी जबरदस्त काम किया। गुलजार साहब के बोलते विशाल भारद्वाज का म्यूजिक था इस फिल्म में। और वैसे भी विशाल की फिल्मों में कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे गुलजार साहब का इनपुट तो हो गई होगा, वो गाने लिखेंगे। रेखा भारद्वाज जी जरूर एक गाना गाएंगी, इरफान खान होंगे चाहे छोटे से रोल के लिए हो, और तब्बू भी होंगी। अच्छा, तब्बू के साथ भी उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं। बहरहाल भारद्वाज साहब की खूबसूरत फिल्मों में से कुछ गाने चुनकर आप तक पहुंचा रहा हूं मैं रेडियो मसी 24/7 लाइव के जरिए। ना सुनिए, मस्त हो जाइए और वापस आइए, क्योंकि अभी कहानी बाकी है मेरे दोस्त।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: आइए मेहरबान बैठिए जाने जान। अरे आप आ गए, दरअसल मुझे पता था कि आप आ गए हैं इसलिए मैं ये गाना गुनगुना रहा था। चलिए आ गए हैं तो हमें बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये प्रोग्राम। आप हमें बता सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर आकर। आज हम विशाल भारद्वाज को जी रहे हैं, उनकी फिल्मों की बातें कर रहे हैं, उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे रोचक पहलू जो शायद आप नहीं जानते हो आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी इनकी एक फिल्म ओमकारा का हमने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले। इस फिल्म में गाना है बीड़ी जलेली। ये गाना कैसे बना इसके पीछे बड़ा मजेदार किस्सा है। विशाल भारद्वाज चाहते थे कि इस फिल्म के गाने भी बड़े हिट होने चाहिए क्योंकि उन्हें माचिस और सत्या के बाद कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं मिल रही थी म्यूजिक कंपोजर के तौर पर, तो ये एक बड़ा हिट म्यूजिक देना चाहते थे। तो इन्होंने गुलजार साहब को बुलाया और कहा कि देखिए आपको इस फिल्म के गाने लिखने। और इन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे इस फिल्म के लिए ना एक मस्त आइटम नंबर चाहिए, जैसे बरेली के बाजार में झुमका गिरारे टाइप का या फिर पान खाए सैया हमारे टाइप का। तो गुलजार साहब ने कहा ठीक है यार लिखते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि मेरे ध्यान में एक गाना है, सिगरेट का छोड़ो ख्याल बाबू सिगरेट पियोगे तो होंठ जलेंगे। तो गुलजार साहब ने कहा कि मैं इससे भी बढ़िया लिख दूंगा और अगर तुम्हें वो अच्छा नहीं लगे तो हम फिर इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो दो दिन बाद गुलजार साहब का कॉल आया, बोले अरे विशाल बीड़ी जलेले जिगर से पिया, जिगर मां बड़ी आग। और साहब उधर विशाल भारद्वाज ये सुनकर उछल पड़े कि सर यही चाहिए, और ऐसे ये बेहद कमाल का गाना बना। सिंगापुर एक और गाने का किस्सा है मेरे पास, जब आप लौटेंगे इन गानों के बाद तो मैं आपको सुनाऊंगा। आप सुनिए, मजा आ रहा है तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर बताइए तो सही। विशाल भारद्वाज की कहानी आप सुन रहे हैं रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। मैं हूं समर।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: सुनते रहिए लेजेंड्स फिर से समर के साथ।

आ गए आप, आइए आइए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शो में जिसका नाम है लेजेंड्स। फिर से एक गाना है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मैंने भी अभी कुछ देर पहले आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा जो विशाल भारद्वाज ने शेयर किया था। फिल्म वही थी ओमकारा, और जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि इस फिल्म का म्यूजिक विशाल भारद्वाज धमाकेदार बनाने वाले थे, तो वो एक गाना घर पर ही कंपोज कर रहे थे। और जनरली विशाल जब भी कोई गाना कंपोज करते हैं तो पहले वो रेखा से गवाते हैं, रेखा जी उनकी पत्नी से, चाहे वो गाना मेल सिंगर का हो या फीमेल का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ताकि उनको लग जाए कि अच्छा गाना बना भी है या नहीं। तो साहब ये गाना है ज़बा बिलागा लागा रे नमक इश्क का। अब इसमें नमक इश्क का के बाद हाई नहीं था ओरिजिनली, लेकिन जब रेखा जी ने गाया तो उन्होंने खुद की तरफ से हाई लगा दिया। ये सुनिए आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

मजा आ गया ना सुन के। कुछ ऐसा ही मजा विशाल जी को भी आया था सुनने के बाद, और उनके मुंह से निकला, वाह क्या गाना गाया है। सिंगापुर ऐसे ही होता है, कला चीज ही ऐसी है, इसमें सब कुछ स्पॉन्टेनियस होता है। कई बार राइटर का लिखा हुआ डायलॉग शूटिंग के वक्त चेंज हो जाता है, मतलब एक्टर सेम टू सेम डायलॉग न बोलकर कुछ और बोल देते हैं और फिर वो हिट भी हो जाता है। कुछ ऐसा ही इस गाने के साथ हुआ। ओरिजिनली विशाल ने हाई नोट्स पर इसे नहीं सोचा था एंड में, लेकिन क्योंकि रेखा जी ने गा दिया तो वो गाना ऐसे ही बन पड़ा और उन्होंने ही फिल्म में भी गाया है। कमाल गाया। चलिए विशाल भारद्वाज के बारे में कुछ और बातें हैं मेरे पास जिन्हें मैं करूंगा इन गानों के बाद। आप तो ऐसे ही धीरज रखकर बैठे रहिए रेडियो मसी 24/7 लाइव के पास और सुनते रहिए। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से समर के साथ।
1: कहा था ना, यूं गया और यूं आया। लीजिए हाजिर है रेडियो मजी 24/7 लाइव पर आपका समर। आप सुन रहे हैं लेजेंड्स फिर से। वैसे आज की हमारी आखिरी मुलाकात है, लेकिन हमेशा हमारा साथ बना रह सकता है, रहता है फेसबुक पर। तो वहां आकर आप हमें बताइए इस शो के बारे में आपको कैसा लगता है, आप क्या और सुनना चाहते हैं, कौन से गाने जो आप सुनना चाहते थे हमने नहीं सुनाए, वो सब बताइए ताकि हम अगली बार उन गलतियों को न करें। आज हमने फिल्म डायरेक्टर म्यूजिक कंपोजर विशाल भारद्वाज की बातें की, वो किस तरह की फिल्में बनाते हैं, उनकी फिल्मों की बात की। ज्यादातर वो उन टॉपिक्स पर फिल्में बनाते हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड होता है। इसके अलावा वो शेक्सपियर से काफी इंस्पायर्ड थे। इनके अलावा वो ग्रेट राइटर रस्किन बॉन्ड से भी बहुत इंस्पायर्ड थे। इनकी दो फिल्में सात खून माफ और ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की एक सीरीज पर आधारित हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और फिल्म बनाई थी जो इसी साल रिलीज हुई है, पटाखा। ये फिल्म भी राजस्थानी राइटर चरण सिंह पथिक की शॉर्ट स्टोरी दो बहने पर बेस्ड है, जो कमाल की हिट साबित हुई। डिफरेंट म्यूजिक डिफरेंट डायरेक्शन के लिए मशहूर विशाल भारद्वाज को कई अवार्ड भी मिले हैं। ब्लू अम्ब्रेला को नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। इसके अलावा इनकी फिल्म कमीने के लिए बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड इन्हें मिला है। फिल्म हैदर के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का अवार्ड इन्हें मिला, और फिल्म तलवार के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले राइटर का अवार्ड इन्हें मिला। भाई देखिए, मुझे तो विशाल भारद्वाज की बनाई हुई फिल्में बहुत ही अच्छी लगती हैं। एक अलग तरह का सिनेमा देखने को मिलता है, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस मिलता है। इनकी फिल्मों में हर एक कैरेक्टर का एक स्पेशल रोल होता है, क्योंकि वो हर रोल हमारे आसपास के लोगों से मिलता जुलता होता है, हम बड़ी जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं उनसे। गुलजार साहब भी इनके बहुत बड़े फैन हो गए, मतलब ये गुलजार साहब के फैन थे इसलिए फिल्मों में आए। लेकिन गुलजार साहब इनकी तारीफ करते हुए कहते हैं,
2: He is so close to me and I am so fond of him. एक बड़ी क्वालिटी क्रिएटिव आदमी की होती है, हर क्रिएटिव शख्स के अंदर, मतलब अपने ही काम को खुद देख के उस पर इम्प्रोवाइज करना कहना कहीं खराब है, ये बड़ी रेयर क्वालिटी है किसी क्रिएटिव आदमी। उसमें इतना दम है और इतनी हिम्मत है कि वो अपना डिसीजन ले सकता है कि हाँ नहीं, मैं इससे बेहतर करूंगा।
1: तो सिंगापुर ये था आज का लेजेंड्स फिर से। आप हमें बताइएगा कि आपको ये शो कैसा लगा। अगली बार किसी एक और नए फनकार के साथ मिलेंगे, उनकी जिंदगी को जिएंगे, उनके गानों को उनके कामों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए दीजिए इजाजत। जाते जाते बस इतना ही कहूंगा कि रखिएगा अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों का और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएगा, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएगा, और कुछ ऐसा कर जाएगा कि लोग आपको याद करें। याद मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में। मैं मिलूंगा आपसे यहीं पर, यह रेडियो मसी 24/7 लाइव। अभी चलता हूं, फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।

0: जब हमारा कोई शो होता है सुपर हिट तो आप कहते हैं और रेडियो मस्ती 24/7 कहता है क्यों नहीं। Presenting the encore of your favorite shows. Another day, another time. For your listening pleasure only. Because super hits deserve a repeat. Check out the encore show schedule on our app menu.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live. A part of Musti Media Network Singapore.
2: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके

नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक, नॉनस्टॉप मस्ती, ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
4: जोश में रहो। This one comes straight from out of the dancehall.

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: दीवाना।
2: एक दीवाना शहर में।
1: एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हा, छोड़ दो आजकल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हा, इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या

को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: शांति और श्रद्धा के साथ भक्ति, प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
1: तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

हर सुबह एक नई शुरुआत है, मन में शांति हो तो दिन अपने आप सुंदर बन जाता है। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति, रेडियो मस्ती 24/7 पर।

तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। फोकस ऑन डूइंग योर ड्यूटी विदाउट बीइंग अटैच्ड टू द रिजल्ट्स।

की पहली रोशनी के साथ अपने मन को भक्ति और प्रेरणा से रोशन कीजिए। आप सुन रहे हैं मस्ती पे भक्ति रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।

0: और सुन टकाटक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: भाई ये जो दूर दूर के रिश्ते होते हैं ना, ये सबसे बेस्ट होते हैं। नहीं, मैं सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, प्यार मोहब्बत वाली रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ। मैं स्पेशली रिलेटिव्स की रिलेशनशिप आपसे कैसी है इसकी बात कर रही हूँ। मतलब आपके रिलेटिव्स आपसे कुछ हजार किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, तो कितना प्यार बरसाते हैं ना ऑन कॉल, है ना, या वीडियो कॉल कर लेंगे या नॉर्मल सेलुलर कॉल कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, प्यार बना रहता है। लेकिन जैसे ही मुलाकात होती है तो क्या होता है, डू नॉट टच मी लाइक सिचुएशन। हाँ, सो मुझे लगता है बाय द टाइम हर एज ग्रुप में ऐसी सिचुएशन आ ही जाती है। हम चाहे कितना कोशिश करें फिर भी ये जो डेफिनेशन है रिलेटिव्स की, ये समझ में नहीं आती है। हाँ, सो मैं आज रेडियो मसी 24/7 लाइव पर इस डेफिनेशन को किनारे रखकर ये वाली डेफिनेशन कि कुछ बदला सा क्या है, तो बता दूं रेडियो मसी 24/7 लाइव के जो ऐप है उसका नाम आपको बदला नजर आएगा, दैट इज मस्ती मीडिया 24/7। हाँ जी, फेसबुक पर हमारा यूजर नेम रेडियो मसी 24/7 एंड मस्ती मीडिया नेटवर्क से भी आप ढूंढ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मस्ती मीडिया 24/7। सो डेफिनेटली इस बदलाव के साथ, बदलते हुए गानों के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ चलिए आगे बढ़ते। डोंट गो एनीवेयर।
4: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। मस्ती मीडिया एकेडमी इज नाउ ओपन फॉर एडमिशंस। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behnor bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: श्रेया जरा उठ के रेडियो मस्ती स्पीकर पे लगा देना।
1: भाई की डन है मम्मा।
2: ड्यूटी
3: लास्ट टाइम मैं उठा था ना,
0: तेरी मेरी बनती नहीं पर तेरे बिना मेरी चलती भी नहीं। इस रक्षाबंधन इस नोक झोक से बंधे रिश्ते को और भी मजबूत करे ज्योति स्टोर्स एंड फ्लावर शॉप के साथ वन कैंपल लेन। राखी, लुम्बा और पूजा के सभी सामान के लिए आपका वन स्टॉप शॉप अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल एट ज्योति।

0: कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर।
1: नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, नुपुर, सुन
2: जोश में
3: यू नो वॉट बाय द टाइम हमें अपनी लाइफ में तो कलर्स चाहिए ही चाहिए हैं, अपने आस पास भी हर चीज में आपको रंग बिरंगा दिखाई देना है। राइट सो ऐसा लगता भी है कि यार रंग भरो, इसको सादा मत रखो, लाइफ थोड़ी और ज़्यादा फैंटास्टिक हो जाएगी। तो देखो इंटीरियर्स में, कपड़ों में, आपके एक्सेसरीज में, इन सब में रंग होना लाजमी है। लेकिन जब बात फूड की आ जाती है तो उसकी सेफ्टी के हिसाब से फूड कलर्स एड ऑन करना, मतलब और भी ज़्यादा केमिकल्स डालना उसको इन्हेंस करने के लिए, ये सही नहीं है। और ये इन्वेंशन हुआ ही क्यों? क्योंकि हमें कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है यार। सो रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं आरजे नुपुर आपके साथ। एंड डेफिनेटली पिछले कुछ सालों से जब आप इंडिया गए होंगे तो कॉटन कैंडी, यानी कि जिसे हम वो बोलते हैं ना बुढ़ी के बाल, हाँ जी ऐसे बुलाते हैं ना उसे, तो ये हो चुके थे पिंक। राइट और उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन जो है वो निकल कर आ रहे थे। और वो कैसे निकल कर आ रहे थे? क्योंकि उसमें थे फूड कलर्स। सो रिसेंटली फूड डिपार्टमेंट की तरफ से जो बहुत सारे क्लॉजेस निकले हैं फूड कलरिंग को लेकर, प्रिकॉशंस लिया जाएगा, तो उसकी वजह से कॉटन कैंडी जो है ना, यानी बुढ़ी के बाल जो है ना, वो पिंक से वाइट हो चुके हैं। बिकॉज पिंक जो है वो उसमें कोई रियल फ्लेवर नहीं हुआ करता था, केमिकल फ्लेवर हुआ करता था। राइट तो ये जो इमेजेस हैं ये सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल भी हुई है। आज इन ऊपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ, डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।
4: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style, anywhere, anytime.

0: सुन टका टक।
1: ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
2: जोश में रहो।
3: अच्छा, मेरे मन में ना इन चीजों को लेकर सवाल आते हैं कि इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी भी नहीं होनी चाहिए, इतनी अच्छी भी नहीं होनी चाहिए कि हमारे सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए, फिर हमें ज्यादा काम करने पड़ेंगे ना, समझ रहे हैं आप। लेकिन इतनी स्लो भी नहीं होनी चाहिए कि हम जिस एक काम को करने बैठे हैं ना, वो काम आधे घंटे में हो सकता है लेकिन एक डेढ़ दो घंटे तक वो काम नहीं हो पा रहा है, राइट। सो एक बीच की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हमारा ज़्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, रिसोर्सेज भी वेस्ट ना हो, दुनिया भर में चार बातें ना हो, चार खर्चे ना हो, डोंट यू थिंक सो। हाँ, सो रेडियो मसी 24/7 लाइव पर मैं आरजे इन्नू पर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और मतलब ये खूबसूरती है हर चीज़ की कि अगर वो ज़्यादा परफेक्ट होती है ना तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, अगर वो चीज़ थोड़ी अंडररेटेड होती है तो हम उसकी और ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, लेकिन अगर वो बीच बीच की होती है ना तो बड़ी अच्छी लगती है, एकदम अपनी टाइप। सो मैं आरजे इन्नू पर आपको बताना चाहेगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ों में इंटरनेट की स्पीड को लेकर इंडिया में अभी अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं। अगर हम वहाँ के IIT एंड कॉलेज मद्रास की बात करें तो वहाँ की उस कैटेगरी में 6.39 GBPS का वायरलेस लिंक जो है ना वो 6G सर्विसेज के लिए रेडी किया जा रहा है। और किस तरह से टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड इसे सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से इसमें इंजीनियरिंग लग रही है, ये वक्त के साथ बताया जाएगा, बिकॉज इसे नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्क कहा जा रहा है कि देखो क्या होता है नया। आज इन ऊपर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ है, कुछ नई पुरानी बातें मिलकर आपको कर रही है इंतजार। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान।

0: हुआ झुमका? कानपुर से सिंगापुर आ गई मस्ती मॉर्निंग्स लेकर आपकी आरजे नुपुर
1: नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर नुपुर सुन जोश में
2: रहो। देखो सबको ये बात बहुत ज्यादा पसंद है कि यार हम ना रेंट पर रहते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, ये जो इसके लैंडलॉर्ड है ना, ये कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है। और अगर वो शख्सियत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी निकल जाए तो कैसा रहेगा? हाँ, सो डेफिनेटली मैं आरजे नुपुर मसी मॉर्निंग शो पर आपके साथ। और ये जो ट्रेंड है, ये बॉम्बे सिटी का आप कह सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेंड है। मतलब वहाँ पे सेलिब्रिटीज जो है ना, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसे सोल्ड आउट करके अच्छा खासा कमाते तो हैं, लेकिन उनकी खरीदी हुई प्रॉपर्टीज को जब कोई ब्रांड या कोई और रेंट आउट कर लेता है ना, तो उसके लिए भी एक ग्लोरिफाइंग मोमेंट हो जाता है कि मैंने इस सेलिब्रिटी की ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना, वो रेंट आउट करी हुई है। मतलब समझ रहे हैं ना, एक अलग अलग लेवल निकल कर आता है। सर रिसेंटली अमिताभ बच्चन ने ऑलरेडी बॉम्बे में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो उन्होंने 3 फ्लोर्स जितने कमर्शियल अपने बिल्डिंग के ना रेंट आउट कर दिए फॉर 33 लाख रुपीस पर मंथ। हाँ जी, 11 लाख रुपीस पर फ्लोर, और 5 ईयर्स की लीज इन्होंने कर दी है। समथिंग 8,428 स्क्वायर फीट एरिया इन्होंने दे दिया है, और आप बिलीव करेंगे इतने वक्त में ये 21.88 करोड़ रुपीस अर्न करने वाले हैं। सोचिए, आपके पास भी अगर पुराना बैंक बैलेंस होता तो आप कितना ज्यादा उससे बैंक बैलेंस बना लेते, राइट? आज नुपुर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ है। डोंट गो एनीवेयर मेरी जान, आती हूँ मैं इन अ शॉर्ट वाइल।
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे।